ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301 91 896

जी साईं जा प्रोग्राम रोशन सुबुह में तव्हां सां गॾु गॾु आहियूं ऐं तव्हांखे असां हिन वक़्तु हिकिड़ो सुवाल यानी हिकिड़ी गुजरात नोट कराईंदासीं जेका तमामु आसान आहे ऐं उहा टिनि पावनि में आहे यानी हुनखे ॻोल्हण जा टे तरीक़ा आहिनि उहे पाव अव्हांखे मां ज़रूरु ॿुधाईंदुसि ऐं तव्हां नोट कयो गुजरात त गुजरात आहे त पोख ते चढ़ी बलाऊं छॾियाऊं पोख ते चढ़ी बलाऊं छॾियाऊं ईअं न चयाऊं पखीअड़ी त इन में पाव हिकिड़ो आहे पोख ॿी बलाऊं टियों पखी तव्हां पोख में बि भञी सघो था ऐं बलाउनि जा नाला बि तव्हां खणी सघो था तव्हां पखियुनि जा नाला बि खणी सघो था इहे टे पाव आहिनि पंहिंजो गुजरात में त गुजरात वरी तव्हांखे नोट करायूं था त पोख ते चढ़ी बलाऊं छॾियाऊं ईअं न चयाऊं पखीअड़ी त साईं जा तव्हां असांजे पंहिंजो गुजरात जो जेको जवाबु आहे तव्हां असांजे मोकिले सघो था फेसबुक जी आई डी ते त असांजी फेसबुक जी आई डी आहे GFM88 ऐं तव्हां असांजे मोकिले सघो था इनबॉक्स में बि तव्हां असांजे जेके असांजा दोस्त प्रोग्राम ॿुधनि पिया नवां या जिन बि पंहिंजो रेडियो सेट हाणे हाणे ऑन कयो आहे त असां उन्हनि खे ॿुधाईंदासीं त जेके दोस्त प्रोग्राम में शामिलु थियणु चाहिनि था त हुन जे लाइ असांजी SMS करण जो आसान तरीक़ो आहे त मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदव उते तव्हां LRK लिखी स्पेस ॾेई पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जो नालो ऐं सवाल जो सही जवाबु तव्हां असांजे 888 ते मोकिले सघो था ऐं तव्हां असांजे सवाल जो सही जवाबु मोबाइल नंबर ते बि लिखाए सघो था असांजो मोबाइल नंबर आहे 0333-1322-88 ऐं तव्हां आसानीअ सां ऐं गुजरात आसान आहे तव्हां ॻोल्हे सघो था बलाउनि में पोख में ऐं पखियुनि में टे पाव आहिनि इन करे मां तव्हांखे हिन हफ़्ते आसान गुजरात ॾिनी आहे तव्हां ॻोल्हे सघो था गुजरात आहे त पोख ते चढ़ी बलाऊं छॾियाऊं ईअं न चयाऊं पखीअड़ी साईं जा तव्हां असांजे मोबाइल नंबर ते मोकिले सघो था पंहिंजो आसान गुजरात जो जवाबु 0333-1322-88 साईं जा जेके माण्हू सूंह सोभ्या ऐं सुंदरता जे ज़ोर ते दिलि ऐं मन ते हुकूमत कंदा आहिनि उहे दिलि जा दिलबर ऐं मन जा मन हूंदा आहिनि उन्हनि लाइ दिलि जा समूरा रस्ता 24 कलाक खुलियल हूंदा आहिनि जहिड़े बि रस्ते खां दिलि में दाख़िल थियनि उन्हनि लाइ का बि रस्ते रोक न हूंदी आहे उन्हनि खे सूंह जो अहिड़ो त सर्टिफिकेट ऐं लाइसेंस मिलियलु हूंदो आहे जो हू बेधड़क दिलनि जे पहाड़नि ताईं पहुची वेंदा आहिनि भला साईं जिन सां दिलि लॻी वई हुजे त अहिड़नि माण्हुनि सां सिर लॻे हा भला सिर कीअं न लॻंदो छो त पंहिंजो फरज़ाना परवीन बि ॻाल्हि करे पई त सिर लॻे सुहिणे सजण सां सिर लॻे

साईं, उन्हा जुदाई जो जबल जॾहिं जीअ मथां किरंदो आहे तॾहिं जिस्म जो मास त ठहियो पर हॾा बि पुर्ज़ा पुर्ज़ा थी कीमो थी पवंदा आहिनि। जुदाई जानब जी जुदाई, जुदाई पिरी प्यारे जी जुदाई, ऐं जुदाई मन घुरे महबूब जी जुदाई। चवंदा आहिनि त जंहिं ते गुज़रे सो ई ॼाणे, केरु थो कंहिंजी जुदाई ॼाणे। जुदाई जा बि केतिरा ई क़िस्म थींदा आहिनि, हमेशह वारी डिघी जुदाई, कुझु सालनि वारी जुदाई, ऐं थोरे वक़्त वारी जुदाई। मतिलबु त जुदाई कहिड़ी बि हुजे, जुदाई जुदाई आहे। जीउ झोरे विझे थी, हियाउ फाड़े विझे थी।

ऐं पखेड़ी। जी साईं मुंहिंजा बिल्कुलु असांजी जेका हिन हफ़्ते पंहिंजो गुजरात आहे तमामु आसान आहे, टिनि पवन सां आहे। त साईं मुंहिंजा जेकॾहिं गुजरात भञिबी आहे, उको धोको हणिबो आहे, त हुन में चवंदा आहिनि त गुजरात जी दुनिया में जेको चइबो आहे त चालीह पती बि जेकॾहिं हुन में सही हूंदी आहे त हुनजो जवाबु असांखे दुरुस्त मञिणो पवंदो आहे। पर तव्हांखे कोशिशि करणी पवंदी, कंहिं खां पुछणो ज़रूरु पवंदो त असांजी जेको गुजरात आहे उहा आहे पोख ते चढ़ी बलाऊं छॾियाऊं, ईअं न चयाऊं पखेड़ी। पोख में, बलाउनि में ऐं जेको आहे सो पखियुनि में असांजी गुजरात भॼी सघी। तव्हां असांजी इनबॉक्स में मोकिले सघो था, इनबॉक्स में आसान तरीक़ो आहे, पंहिंजो मोबाइल जी राइट ऑप्शन में वेंदव, एल आर के लिखी स्पेस ॾींदव, पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो ऐं सवाल जो गुजरात जो जवाबु लिखी करे तव्हां 888-1 ते तव्हां मोकिले सघो था। ऐं तव्हां असांजे GFM88 जी ID ते तव्हां असांजे फेसबुक ते बि मोकिले सघो था पंहिंजे गुजरात जो सही जवाबु। ऐं असांजे स्टूडियो जी मोबाइल नंबर ते बि तव्हां असांखे 0333-2-1322-8 ते बि तव्हां असांखे गुजरात जो सही जवाबु असां ॾे तव्हां मोकिले सघो था, ॿुधाए सघो था। ऐं असांजी गुजरात आहे त पोख ते चढ़ी बलाऊं छॾियाऊं, ईअं न चयाऊं पखीअड़ी। ऐं सवाल जो जवाबु गुजरात जवाबु ॻोल्हियो। ऐं थोरी देरि में हलंदासीं न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़, कमर्शल ब्रेक जी तरफ़, वरी वापसि ईंदासीं, कॾहिं बि न वञिजो।

ईरान ऐं अमरीका विच में टेक्निकल सतह जे ॻाल्हियुनि जो ईंदड़ मरहलो 14 ऐं 15 जुलाई ते इस्लामाबाद में थियण जो इम्कान। हुकूमती ज़रियुनि जो चवण आहे त स्विट्ज़रलैंड जे शहर बर्गन स्टॉक ऐं कतर जी राजधानी दोहा में ॻाल्हियुनि जा ॿ दौर थी चुका आहिनि। टेक्निकल मामलनि ते ईरान ऐं अमरीका माहिर ॻाल्हियुनि जे ईंदड़ मरहले में शरीक थींदा। पाकिस्तान ट्राकड़े कंदड़ तौरु ईरान ऐं अमरीका विच में टेक्निकल ॻाल्हियुनि में शरीक थींदो। परॾेही मीडिया मूजिबि इस्लामाबाद में थींदड़ ॻाल्हियुनि में एटमी प्रोग्राम ज़ब्त कयल असासनि ते बि ग़ौर कयो वेंदो। ॻाल्हियुनि में शिरकत लाइ ईरानी वफ़द जो फ़ैसिलो शहीद सुप्रीम कोर्ट जी तदफ़ीन बाद थींदो। ईरानी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमनाई जनाज़े में लखे माण्हुनि जी शिरकत खे रोअंदो ॾिसी अमरीकी सदर ट्रंप हैरान थी वियो। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट मूजिबि ट्रंप चयो त हू सम्झंदो हो त ईरान जा माण्हू आयतुल्लाह खुमनाई सां नफ़रत कंदा हुआ। सदर जनाज़े में माण्हुनि खे रोअंदो ॾिसी हैरत थी आहे। चाहे हूंदा जनाज़े में मौजूदु समूरनि माण्हुनि खे निशानो बणाए सघूं पिया, पर असां ईअं न कंदासीं छो त अहिड़े अमल सां ॻाल्हियुनि लाइ को बि न बचे हा। ईरान ऐं अमरीका इतफ़ाक़ सां ॻाल्हियुनि में आर्ज़ी तौर ते वक़्फ़ो करण जो फ़ैसिलो कयो। कानून वारे वफ़ाक़ी वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ चयो आहे त असां दुनिया जे सभ खां वॾी स्पेक्ट्रम में एक्शन करे छॾियो। टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक़्त जी घुर्ज आहे। आज़म नज़ीर तारड़ चयो त शिज़ा फ़ातिमा सां गॾु इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, चयो तालीम मक़सदनि ऐं फ्री लॉन्सिंग लाइ डिजिटल कनेक्टिविटी ज़रूरी आहे। कंहिं हिकु कंपनी खे नवाज़ण वारनि इल्ज़ामनि जूं शाहिदियूं न आहिनि मिलियूं। शिज़ा फ़ातिमा चयो त टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम लाइ इतफ़ाक़ी राय सां कानून साज़ी कई पई वञे। वक़्त सां गॾु निज़ाम में बहितरी आणणु ज़रूरी आहे।

0: इस्लामाबाद में पाकिस्तान एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन के शहीद कर्नल जवाबदार के गिरफ्तार किए गए। पुलिस जवाबदार साद अब्बासी के नवन कलाकन अंदर गिरफ्तार करे वरतो। आज इस्लामाबाद अली नासर रिजवी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तो मुल्क की राजधानी में हाजिर सर्विस फौजी ऑफिसर की शहादत एक चैलेंजिंग केस हो। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जवाबदार के नवन कलाक अंदर गिरफ्तार करे वरतो। जवाबदार साद अब्बासी आईनआरई निमरा की निजी स्टोर से गड कम कंदा हुआ, रोजानो गड इंदा वेंदा हुआ। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक नारी के जवाबदार का बचाओ पर फायरिंग में शहीद थी वो। एसटीपी पारा पानी कोट ए सिंधी वसीलन की फुलट आवाम दुश्मन बजट खिलाफ मुजाहरा। हैदराबाद सखर लाड़कानो नवाबशाह भान सईदाबाद नुसर रोज सेवन शहदादकोट मंजूराबाद बारा ठुल कुंटी तंगवाणी बेन शहर में एहतजाजी मुजाहरा। अगवाणन जो था हुकूमत बजट में अरबें रुपया पंजाब कश्मीर गिलगित में खर्च कया। सिंध वसीलन के वफाक राथों हणी रो है पानी से भी धाड़ो हयो पे वे जैं खिलाफ जदोजहद जारी रही। बदीन डिस्ट्रिक्ट जेल में कतल केस के जवाबदार फाहो खाई मुबैना तौर से आबकात कर छो। लाश अस्पताल मुंतकिल। जेल इंतजाम चवण है तो जवाबदार हुसैन कची जेल के वॉशरूम में फाहो खाई आबकात कर। जवाबदार हुसैन कची के 2 जून से मातरी की तरह अदालती रिमांड से जेल मोकिल हो। कैदी जो मर पोस्टमार्टम ला इंदस अस्पताल बदीन मुंतकिल किया वो है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद 3 रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-33-8556-9।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर। राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GAFM 94।

साईं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह में वापसि अची चुको आहियूं ऐं असांजी गुज़ारत जो आख़िरी लम्हो तव्हां ॿुधाईंदासीं आख़िर में त पोख ते चढ़ी बलाऊं छॾियाऊं ईअं चाहियूं पखीअड़ी। साईं मुंहिंजा अव्हांखे हिन कलाम खां बाद में तव्हांखे ज़रूरु उन्हनि दोस्तनि जा नाला ॿुधाईंदासीं जिन असांखे परफेक्ट ऐं सही गुज़ारत जो जवाबु ॾिनो आहे, त उन्हनि जा नाला अव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं। उन्हनि जे इंतज़ार जूं घड़ियूं ख़तमु हूंदियूं ऐं सभिनी जी दिलि बि धड़कंदी हूंदी त मुंहिंजो जवाबु सही आहे अलाए ग़लति आहे। त साईं मुंहिंजा अॼुकल्ह हिननि गर्मियुनि में बि धड़कन वधी वई आहे उन्हनि माण्हुनि जी जंहिंजूं हिननि गर्मियुनि में हिन साह बू साटींदड़ ज़िंदगीअ में जेको आहे सो माण्हुनि जी शादी पई थिए, कंहिंजा जेको आहे सो छठियूं पियूं थियनि, त कंहिंजा वरी सुनत पिया थिए। त बहरहाल मुंहिंजी दिलि चवंदी आहे त हर कंहिंजे अङण ते ख़ुशीअ जा दोल पिया वॼनि ऐं दोलनि जे ददकनि ते ताड़नि जा टहकार हुजनि ऐं झूमिरनि जा झूला पिया झूलनि ऐं नीह निरवार थी पियो नचे। ऐं शायरी जे हवाले सां लोकगीत हुजे या सेरो हुजे, हिन सिन्फ़ में खुलियल ख़ुशीअ जो इज़हार हूंदो आहे। पोइ मंगणी हुजे, निकाह हुजे, कुंवार जो वनवाह हुजे या शादी हुजे, जेको मुकमल ख़ुशीअ जे लफ़्ज़नि सां चिटियलु हुजे थो जंहिंखे सेरो या लोकगीत चइजे थो। त साईं मुंहिंजा होमेरा चना जो आवाज़ आहे, लोकगीत आहे, गॾिजी पिया ॿुधूं।

के उन सवाल जो जवाब उन खे उन गुजरात जो जवाब ज़रूरु अची वेंदो। जेकॾहिं एतिरी बि कोशिशि नथो करे त थोरो कंहिं वॾड़नि खां जेके सालिख आहिनि जेके सुघड़नि उन्हनि खां बि मालूमात पाण वठी सघे थो, उन में मालूमात मिलंदी। कुझु दोस्तनि पंहिंजो महिनत कई आहे, कोशिशि कई आहे, सॼे प्रोग्राम ॿिनि कलाकनि जे प्रोग्राम में काफ़ी नाला आया आहिनि, काफ़ी दोस्तनि फ़ोन कई आहे, SMS कया आहिनि, पर टे दोस्त आहिनि जंहिंजी गुजारत जो जवाबु सही आहे, जंहिंमें हिकिड़े भाउ उको धोको आहे हयो आहे, बाक़ी ॿिनि दोस्तनि जेको आहे सो उहो सही जवाबु ॾिनो आहे, बिल्कुलु परफेक्ट सही जवाबु ॾिनो आहे। त मां तव्हांखे पहिरियां गुजारत सिधी थो करे ॿुधायां त गुजारत असुल में आहे छा। गुजारत इहा आहे त पोख ते चढ़ी भलाऊं छॾियाऊं, ईअं न चयाऊं पखेड़ी, त इहा असांजे वञे थी सुर उमिरि मारवी में। सुर उमिरि मारवी में जॾहिं इहा गुजारत वञे थी त उमिरि जॾहिं मारवीअ खे उन खूह तां खयो मथे खूह तां, त हूअ साहेड़ियुनि सां गॾु उन खूह ते पाणी भरण आई, त उते जॾहिं उमिरि हुन खे खयो त पोइ असुल ॻाल्हि पोख ते चढ़ी भलाऊं छॾियऊं, माना पोख महरी उठ ते, महरी पोख आहे, महरी दाल जेका असां खाईंदा आहियूं उहा महरी पोख आहे, महरी उठ ते चढ़ी भलाऊं छॾियऊं, बॾाऊं माना वाघूं, जेके पंहिंजे उठ जूं रस्सा हूंदा आहिनि असां हुनखे वाघूं बि चवंदा आहियूं, त वाघूं भलाऊं बि आहिनि, त उहो ते उठ ते महरी उठ ते चढ़ी भलाऊं छॾियऊं माना वाघूं छॾियऊं। उन खां बाद वञी उठो हलियो त मारुई पंहिंजे साहेड़ियुनि खे मयार थी ॾिए त ईअं न चयाऊं आउड़ी, सम्झी आड़ी जेका आहे उहा आहे पखी, त साहेड़ियुनि खे मयार पई ॾिए त ईअं न चयाऊं आउड़ी, आड़ी माना पखी आहे। त साईं मुंहिंजा उको धुको जेको आहे सो हिकिड़े दोस्त हयो आहे मीरपुर ख़ासि खां, भाउ इक़बाल लाचारी आड़ीअ जो उको धुको हयो, ऐं असांजो हाफिज़ मुनीर खोसो लाड़काणे खां उन भाउ जेको आहे सो आड़ी बि ॿुधायो आहे, वाघो बि ॿुधायो आहे, ऐं भाउ थोरी सिधी कई, सिर्फ़ हुन सुर ससुई मां ॿुधायो पर असुल सुर उमिरि मारवी आहे, ऐं सुर उमिरि मारवी ऐं उन जा टई पावा जेको असांखे ॿुधाया भाउ अज़ीज़ सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां, भाउ जी वॾी महिरबानी। पहिरें नंबर ते असांजो भाउ अज़ीज़ सोलंगी गुजारत जो सिधो जवाबु ॾिनो, ऐं उमिरि मारवी जो जेको सुर हुयो उन मां सिधो करे ऐं सॼो जेको किसो आहे उन भाउ इहो ॿुधायो त हुन पंहिंजो महरी पोख बि ॿुधाई ऐं जेको आहे सो वाघूं बि ॿुधायो, बलान में आड़ी पखी ॿुधायो। पहिरें नंबर ते भाउ अज़ीज़ सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां, ॿिए नंबर ते भाउ हाफिज़ मुनीर सोलंगी मुनीर खोसो लाड़काणे खां, ऐं टे नंबर ते भाउ उको धुको जेको हुयो भाउ इक़बाल आचार्यनि जी वॾी महिरबानी। त असांजा भाउ असांजी गुजरत इहा आई त पोख ते चढ़ी भलाऊं छॾियाऊं ईअं न चयाऊं पखीअड़ी, यानी पोख महरी उठ ते चढ़ी वाघूं छॾियाऊं, वाघूं माना रस आहे उहे वाघूं आहिनि, ऐं उमिरि मारवी जॾहिं मारवी वई त मारवी पंहिंजो पंहिंजे साहेलियुनि खे मज़ार पई ॾिए ईअं न चयाऊं आवड़ी, आड़ी पखी आहे। त साईं मुंहिंजा इन्हनि टिनि दोस्तनि जे नाम असां कंदासीं जलाल चांडे जो ख़ूबसूरत नगमो नाम, ऐं गॾिजी ॿुधो, इंजॉय कयो।

जी हर समय जलाल चांडी इन खूबसूरत कलाम ते प्रोग्राम रोशन सुबह जो वक्त पहुंचे पे पांजी पजानी ते पांजी मेज़बान नेमतुल्लाह जुणे जो के दींदा इजाज़त अल्लाह ने कहा।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analysis.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। अब आप

ईरान ऐं अमरीका विच में टेक्निकल सतह वारनि ॻाल्हियुनि जो टियों दौर 14 ऐं 15 जुलाई ते इस्लामाबाद में थियण जो इम्कान। हुकूमती ज़रियुनि जो चवणु आहे त स्विट्ज़रलैंड जे शहर बर्गनस्टॉक ऐं कतर जी राजधानी दोहा में ॻाल्हियुनि जा ॿ दौर थी चुका आहिनि। टेक्निकल मामलनि ते ईरानी ऐं अमरीकी माहिर ॻाल्हियुनि में शरीक थींदा। पाकिस्तान चाकरी कंदड़ तौरु ईरान ऐं अमरीका विच में टेक्निकल ॻाल्हियुनि में शरीक थींदो। पर ॾींहुं मीडिया मूजिबि इस्लामाबाद में थियण ॻाल्हियुनि में एटमी प्रोग्राम ऐं ज़ब्त कयल असासनि ते बि ग़ौर कयो वेंदो।

0: कर विंदु।
1: लखी गुलाम शाह भरसां जतो ही अमरधुरन में फैसले बाद बीहर तकरार शुरू थी पे फायरिंग में निगर मारज पे पुलिस जो चक्कर बाद ऑपरेशन पंजन जवाबदार के गिरफ्तार करण की दावा गोठान चो तो निगर जुड़ियल साद खानाणी पुलिस की फायरिंग में मारज पे है।

खैरपुर शहर मां गुजरंदड़ मीर वा कैनाल मां नामालूम शख्स जो लाश हथ इलाइक़े वासिन लाश ॾिसी पुलिस खे इतलाह ॾिनो। पुलिस पहुची लाश अस्पताल मुंतकिल कयो। कनकोट में रसालदार शाही वाह में ॿुधी फोत थियल ॿार जो लाश हथ मकामी माण्हुनि खे घटू शाख मां ॿार जो लाश मिलियो।

0: लॉर्ड खाने की मार्केट थाने क्षेत्र में सर्किट पीरवार इलाके में पुलिस जो मुकाबलो एक दुहारी मार्च पे पुलिस फौज मार्च पर दुहारी की सुणप वारा वासी रफीकपुट मोड़ चांडियो तौर थी है। जवाबदार खिलाफ मुख्त थाना में केस दाखिल थे पुलिस पारा मामले की जांच शुरू की वही है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पेंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।
5: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0383 5769 0300 3855 69।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा?
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
8: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 03013992836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

पूरे पूरे तैयार हैं पूरे पूरे एक बजे तक. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 to 1 PM. आपका मेरे साथ रहता है ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सा साथ, जो कि आज भी जारी हो सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक. वक्त हुआ ज्यादा 11:21 पाकिस्तान का म्यारी वक्त है, तमाम लोगों की घड़ियों में बज रहा है. और इसके अलावा जो लोग इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में, ट्रक में, रिक्शा में, कार में, बाइक पे, जिस पे भी जहाँ भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हाँ वो सेफ जर्नी बेटर लगता है. अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए, ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली. बबल जी खुदा खैरियत है मौजूद और तवक्कली खुदा खैरियत है मतलब तमाम लोग जिन लोगों की सालगिरह है उनको कहेंगे मैंने मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हैप्पी बर्थडे टू यू. इसके अलावा जो लोग बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें. आम

जिन जिन गलियों और शोबारों शहरों और शराहों में वादियों और पहाड़ों दरियाओं और मर गुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम अहलन वसहलन मरहबा बखेर आगे ले जी आया नू सद बिस्मिल्लाह बहुत जोर चाओ नी हाओ एंड वेलकम इन टू जिंदगी गुलजार है।

तो प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें करूंगी. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और इस गाने के साथ हम चलेंगे आगे और आपको बताएंगे हम क्या कर रहे हैं. स्टे ट्यून्ड.

0: की हो।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एटमाट, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307359210।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड मेरापुर, कराची ए इस्लामाबाद जो मशहूर। डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर।

गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: लगिए तो खड़ाई दे फिर तू प्रोग्राम में मेरे साथ।
1: ओके ये किसका गाना है?
0: ये मुझे दादे मंजूर सकता नहीं हुआ।
1: ओके मैं बिल्कुल इसको सर्च करती हूँ और मुझे ये बताइए कि
0: जी जी
1: किसी को डेडिकेट करना है?
0: ये आपको।
1: ओके जी थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़। भाई का गाना हम सर्च करके प्ले करेंगे, कर दिया है तो सुनेंगे और एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जाने में जाएंगे। स्टे ट्यून्ड।

0: Okay, जी नेक्स्ट कॉलर. हेलो
1: हेलो
0: हेलो, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: SRH रोड़ी से.
0: SRH, कौन सा गाना गा रहे हैं?
1: कौन सा गाना गा रहे हैं
0: आप बताएं ना.
1: मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा.
0: बॉलीवुड का है ना?
1: जी
0: बॉलीवुड का थोड़ी गाना है, पाकिस्तानी गाना गाना है.
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, ये बॉलीवुड का नहीं, पढ़ा है बॉलीवुड शहजादा मेरा. नहीं नहीं नहीं नहीं, ये बॉलीवुड का नहीं, पढ़ा है बॉलीवुड शहजादा मेरा.
0: शहजाद रोएगा?

0: ओके एक और कॉलर. हेलो
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम सागर भाई, कौन सा गाना?
1: गाना मैं गुलाबी आंखें जो तेरी देखी.
0: गा दे फिर थोड़ा सा.
1: गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, सवालो मुझको ओ मेरे यारो, तवल्ला मुश्किल हो गया. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, दिल हो गया.
0: ओके वेरी नाइस. किसी को डेडिकेट करना है?
1: डेडिकेट दोस्ती नहीं है,
0: दोस्ती नहीं है. चले फिर किसी को डेडिकेट नहीं करना, फिर हम आगे चलते हैं.
1: गाना है देखो, गाना है ये तो मैं दूसरा.
0: हाँ जी मैं जिसका भी है, लेकिन हम आतिफ असलम का सुनेंगे. ठीक है?
1: हाँ ठीक है ठीक है.
0: ओके जी थैंक यू, अल्लाह
2: हाफिज़.
0: आज का टंग ट्विस्टर, परवीन ने प्लास्टिक की प्लेट पर पिस्ते पापड़ और पॉपकॉर्न पेश किए. ठीक है, ये कहना है परवीन ने प्लास्टिक की प्लेट पर पिस्ते पापड़ और पॉपकॉर्न पेश किए. इसको जल्दी जल्दी कहना है. ठीक है, परवीन ने प्लास्टिक की प्लेट पर पिस्ते पापड़ और पॉपकॉर्न पेश किए. ठीक है, जितनी स्पीड में जल्दी जल्दी और ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे वो जो बंदा बोलेगा वो विन कर जाएगा अगले सेगमेंट को, जिसका नाम है बोलो तो माने.

0: ईरान ऐं अमरीका विच में टेक्निकल स्थितावरनि ॻाल्हियुनि जो टियों दौर 14 ऐं 15 जुलाई ते इस्लामाबाद में थियण जो इम्कान। हुकूमती ज़रियनि चवण आहे त स्विट्ज़रलैंड जे शहर बर्गस्टॉक ऐं कतर जी राजधानी दोहा में ॻाल्हियुनि जा ॿ दौर थी चुका। टेक्निकल मामलनि ते ईरानी ऐं अमरीका माहिर ॻाल्हियुनि में शरीक थींदा। पाकिस्तान जो आख़िरी किरदार अदा कंदड़ ईरान ऐं अमरीका विच में टेक्निकल ॻाल्हियुनि में शरीक थींदो। वॾी मीडिया मूजिबि इस्लामाबाद में थींदड़ ॻाल्हियुनि में एटमी प्रोग्राम ऐं ज़ब्त कयल असासनि ते बि गौर कयो वेंदो।
1: सीड़पकारनि खे हर मुमकिन सहूलियतूं ॾियण लाइ पुरअज़म आहे। वेस्ट पाक कोटनि जो मक़सदु परॾेही सीड़पकारीअ खे हथी ॾियणु आहे। नाणे वारे वफ़ाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त पाकिस्तान में सीड़पकारीअ जा घणा मौक़ा मौजूदु आहिनि ऐं वेस्ट पाक पोर्टल सां सीड़पकारनि लाइ आसानी पैदा थींदी।

ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी जो आखिरी रस्मों जारी मड़ के जरूरी सूरत में मुसला मस्जिद का कुम मुंतकिल करने वालों सफर शुरू मड़ के लखे सोगवार की मौजूदगी में तेहरान के मुख्तलिफ रस्तों गुजारियों वो जलूस बाद शहीद आयतुल्लाह खमेनी जो मड़ कुम मुंतकिल किया।

टेलीकॉम बिल ज़रिए कई चीनी मिल्कियत कब्ज़ो नथी सघंदो कानून साज़ी इतफ़ाक़ की राय से थी रही है। आई टी बाबत वफ़ाक़ी वज़ीर शिज़ा फातिमा चयो है तो टेलीकॉम जो पुरानो कानून जदीद दौर से आहंगे न है। टेलीकॉम बिल कौमी असेंबली में छह तरमीमन से मंजूर थो है। बिल ज़रिए कें भी निजी मिल्कियत कब्ज़ो न थो। लखी गुलाम शाह भट्ट से जतोई मर धुरन में फैसले बाद बीहर तकरार शुरू थी पो फायरिंग में नींगर मारजी पो पुलिस जो तकरार बाद ऑपरेशन पंज जवाबदार गिरफ्तार करने की दावा गोठान चवा है। नींगर जुड़ियल साथ खानी पुलिस की फायरिंग में मारजी वो है।

0: नामालूम शख्स जो लाश हथ इलाके वासिन लाश डिसी पुलिस के इतला डिनो। पुलिस पहुंची लाश अस्पताल मुंतकिल कयो। कंदकोट में रिसालदार शाही वाह में बुढ़ी फोत थियल बार जो लाश हथ मकामी माण्हुनि खे घटू शाख मां बार जो लाश मिलियो।
1: लाड़काने जी मार्केट थाने जेद सर्किट जो पीरवार इलाके में पुलिस मुकाबलो एक दोहारी मारजी वियो। पुलिस मुआवजे मूजिब मारजी वियल दोहारी सुञाणप वारा वासी रफीक पुट मोर चांद जो तौर थी आहे। जवाबदार किला मुख्य थाना जो केस दाखिल थियल आहे। वधीक जांच जारी आहे।
0: चकवे जो कारे इल्ज़ाम हेठि नारीअ जे क़तल जो जरबो इल्ज़ाम हेठि आयल जवाबदार मथां 1,75,00,000 रुपया ॾंड लागू। ॻोठु शहर छटो में 1.5 महीनो अॻु मुबैना तौर क़तल कयल नारी अमीना ज़ाल अशफाक्षर जे क़तल जो जरबो ॻोठु डिया में लाल ॾिनो जी सरबराहीअ में जरबो थियो। नौजवान नागकशर मथां 1,75,00,000 रुपया ॾंड विधो वियो। वाके जो केस औरत जे मुड़ुसु अशफाक्षर बख़्श अली शर ऐं ॿियनि ख़िलाफ़ दाख़िल कयो वियो हो। जवाबदारनि जरबो सॾाए

0: फुटबॉल वर्ल्ड कप जे प्री क्वार्टर फाइनल जारी पंज भेरा फुटबॉल जे आलमी चैंपियन रहंदड़ ब्राज़ील टीम एवन खां ॿाहिरि थी वई नॉर्वे ब्राज़ील खे हिक जे मुक़ाबले में ॿिनि गोलनि तां शिकस्त ॾेई एवन खां ॿाहिरि कढी छॾियो इंग्लैंड दिलचस्प मुक़ाबले बाद मेक्सिको ॿिनि जे मुक़ाबले में टिनि गोलनि तां शिकस्त ॾिनी क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड जो मुक़ाबलो नॉर्वे सां थींदो केनेडा मेक्सिको ऐं ब्राज़ील शिकस्त बाद एवन खां ॿाहिरि थी चुकियूं आहिनि
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद 3 रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-33-8-5-69।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहराबपुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहराबपुर राबते जे लाइ 0302018-00003।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
3: न अदा।
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहराबपुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहराबपुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराने ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का, और हम वापस आ चुके हैं एक अदद ब्रेक के बाद. और ब्रेक के बाद वाला जो हमारा सेगमेंट है, दैट इज बोलो तो माने. और बोलो तो माने में आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों को एक अदद टंग ट्विस्टर कहना है. और वो जो टंग ट्विस्टर है ना, वो ये है कि परवीन ने प्लास्टिक की प्लेट पर पिस्ते, पापड़ और पॉपकॉर्न पेश किए. ठीक है, ये कहना है. तो इस सेगमेंट के फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: दुआ कवल.
0: दुआ कवल कैसे, ठीक ठाक?
1: हाँ ठीक हूँ. आपने?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ जी. और मुझे ये बताइएगा कि टंग ट्विस्टर बोलेंगी?
1: हाँ बोलूंगी.
0: बोल दें.
1: परवीन ने प्लास्टिक की प्लेट पर पिस्ते, पापड़ और पॉपकॉर्न पेश किए. परवीन ने प्लास्टिक पर पिस्ते, पापड़ और पॉपकॉर्न पेश किए. परवीन ने प्लास्टिक की प्लेट पर पिस्ते, पापड़ और पॉपकॉर्न पेश किए. परवीन ने प्लास्टिक की प्लेट पर पिस्ते, पापड़ और पॉपकॉर्न पेश किए. परवीन ने प्लास्टिक की प्लेट पर पिस्ते, पापड़ और पॉपकॉर्न पेश किए.
0: Okay, you very nice. और कुछ कहना है?
1: अभी आपने गाना सिलेक्ट किया होगा अभी की भी तो.
0: हाँ देखें, आपका फेवरेट गाना और उसके बाद आपकी कॉल भी लग गई.
1: हाँ अभी दो बार लगी.
0: ये है. और कुछ कहना है?
1: क्या कहूँ, नहीं
0: चला. ओके, क्या कहूँ, कुछ नहीं कहना.

0: Okay, ji, next caller, hello.
1: Hello, assalam alaikum.
0: Wa alaikum assalam, kaun kahan se?
1: Yara gulab li gari, kurna ugaran de shahar, gazi khan rin de.
0: Gazi khan rin, bhai, kaise hi thik thak, aur tang dusra bolenge?
1: Allah ka shukriya, sunao.
0: Main bilkul theek hoon, aur tang dusra bolenge, sunaye?
1: Koshish to karenge, Allah khair kare.
0: Okay, kar le.
1: Parveen ne bula ke plate pe chitte papad aur popcorn chitte parveen ne bula ke plate pe chitte papad aur popcorn chitte parveen ne bula ke plate pe chitte papad aur popcorn chitte parveen ne bula ke plate pe chitte papad aur popcorn chitte parveen ne bula ke plate pe
0: chitte
1: aur popcorn chitte parveen ne
0: bula ke plate pe okay ji very nice aur kuch
1: और भाजी मेरे मुख्तल फनकारों ने कहा है आपको व्हाट्सएप कर पे चलाओगी नहीं
0: कौन सा
1: मैंने मेरे गीत है शायरी के
0: हाँ हाँ
1: वो मुख्तल फनकारों को आवाज रिकॉर्ड किए हुए हैं कंपनी की तरफ से वो आपको व्हाट्सएप कर दो चलाओ प्रोग्राम
0: ओके जी वैसे भी अगर आप जो सुनाते हैं वो गाना मैं प्ले तो करती हूँ
1: वो तो करती हूँ ऐसे मेरा मतलब रेगुलर चलते रहे ना यहाँ पे आपके
0: अच्छा पब्लिसिटी चले ठीक है नो इशू
1: फिर भेज दो नहीं
0: नहीं आप मुझे सुनाया करें फिर वो गाने हम प्ले किया करेंगे ठीक है
1: हाँ चलो
0: ओके अल्लाह हाफिज थैंक यू पब्लिसिटी वाला काम हम पैसे लेके करते हैं ठीक है अच्छा नेक्स्ट कॉलर हेलो हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम सरदार आज आपकी आवाज बहुत बेटर आ रही है मोबाइल सही करवा लिया आपने
2: ये खुद ही सही हो गई
0: हाँ खुद ही सही हो गया
2: जी
0: देखिए फोन ने भी कहा इसने तो मुझे सही करवाना ही नहीं है मैं खुद ही ठीक हो जाता हूँ है ना
2: जी
0: अच्छा टंग ट्विस्टर सुना बोलेंगे जी
2: आप एक बार रिपीट कर
0: मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ बिल्कुल आपने कहना है कि परवीन ने प्लास्टिक की प्लेट पर पिस्ते पापड़ और पॉपकॉर्न पेश किए
2: परवीन ने प्लास्टिक की प्लेट पर पिस्ते पापड़ और पॉपकॉर्न पेश किए परवीन ने प्लास्टिक की प्लेट पर पिस्ते पापड़ और पॉपकॉर्न पेश किए परवीन ने प्लास्टिक की प्लेट पर पिस्ते पापड़ और पॉपकॉर्न पेश किए परवीन ने प्लास्टिक की प्लेट पर पिस्ते पापड़ और पॉपकॉर्न पेश किए परवीन ने प्लास्टिक की प्लेट पर पिस्ते पापड़ और पॉपकॉर्न पेश किए परवीन ने प्लास्टिक पॉपकॉर्न पेश किए परवीन ने प्लेट प्लास्टिक के प्लेट पर पिस्ते पापड़ और पॉपकॉर्न पेश किए परवीन ने प्लास्टिक के प्लेट पर पिस्ते पापड़ और पॉपकॉर्न पेश किए परवीन ने प्लास्टिक के प्लेट पर पिस्ते पापड़ और पॉपकॉर्न पेश किए परवीन ने प्लास्टिक के प्लेट पर पिस्ते पापड़ और पॉपकॉर्न पेश किए परवीन ने प्लास्टिक के प्लेट पर पिस्ते पापड़ और पॉपकॉर्न
0: ओके स्टॉप वेरी नाइस और कुछ कहना है अल्लाह हाफिज़ थैंक यू और गाना सुनेंगे अब हम तसल्ली से

ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और एक और ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं जी. बहुत सारे कमेंट्स मैसेजेस आप लोगों के रिसीव होते जा रहे हैं मुझे, जिनको हम इंक्लूड करेंगे और इंक्लूड करने के साथ साथ

जी बहुत सारे कमेंट और नूर हुसैन तुनियो ने हमें कमेंट किया है बदीन से, सिस्टर रुखसार गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, अल्लाह ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस, टेक केयर, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे जी, थैंक यू. और इसके अलावा अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं आरजे रुस्कार, देखिए बिगाड़ दिया ना नाम मेरा, कितनी गलत बात है, वेरी बैड. तो नाम बड़े खूबसूरत होते हैं सबके, अगर कोई भी किसी का नाम बिगाड़ देता है या उल्टा लेता है डेफिनेटली जैसे मुझे बुरा लग रहा है वैसे सबको लगेगा. तो रुस्कार नहीं, रुखसार, जहां तक मुझे याद है बचपन में ना मेरी छोटी, मुझसे छोटी मेरी कजन मुझे रुखसार नहीं रुस्कार कहती थी, बोला नहीं जाता था ना उनसे, तो

ओके जी, वेरी नाइस सॉन्ग. और इसी के साथ हम गाना चेंज कर लेंगे और थोड़ा सा अंग्रेज बनेंगे, प्ले करेंगे सरीना, नहीं सफारी बाय सरीना, सुनेंगे और एंजॉय करेंगे.

आगे चल के गर्मी कुछ कम हो जाए, कुछ कम हो जाए, लेकिन गर्मी शदीद जो अगर रहेगी सो इन जुलाई एंड अगस्त, उसके बाद फिर थोड़ा सा चिल जो मौसम है मे बी हो जाए, जो मौसम है

सो फाइनली इसी के साथ मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है और हम जाते हैं और हम जाएंगे और हम प्ले करेंगे लास्ट में एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड द सॉन्ग कॉल्ड मे बाय आसिम अज़र. इसी के साथ फाइनली मैं लूंगी आपसे इजाजत, मेरी आपसे चिट चैट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजे. सुनना मत भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, बामानी खुदा, अल्लाह हाफिज.

0: नौशहरो, मीरपुर खास, लाड़काना, सक्खर गूंज रही है।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: पेरा फुटबॉल जो आलमी चैंपियन रहंदड़ ब्राज़ील जी टीम एवन का बाहर थी पई नॉर्वे ब्राज़ील के जे मुकाबले में बिन गोलन ता शिकस्त दे एवन का बाहर कटी छियो इंग्लैंड दिलचस्प मुकाबले बाद मेक्सिको बिन जे मुकाबले में टिन गोलन ता शिकस्त दिनी क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड जो मुकाबलो नॉर्वे से थिंदो कनाडा मेक्सिको आई ब्राज़ील शिकस्त बाद एवन का बाहर थी चुकियो आ
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-8051
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
2: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 0242460100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
4: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 03013992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

राहुल जी कितना प्यारा कलाम है जो कि सुनकर हमें वाकई ये एहसास होता है कि वाकई जी दुनिया जो है ना वो मतलब की और कितने सारे रिश्ते हमारे साथ मौजूद होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ जी हम आपके साथ हैं लेकिन वो दरअसल होती नहीं है। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर आप लोगों के साथ मौजूद है जनाब। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो बिल्कुल मेरी जान आपको बताएंगे कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स को या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को तो उसका इस्तेमाल आपकी स्किन के ऊपर किस तरह करेंगे और साथ साथ जो है ना आपके चेहरे पर उनका जो कमाल का रिजल्ट होगा वो कैसा आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल जी बहुत बातें हैं जो कि आप लोगों को बताएंगे लेकिन साथ साथ आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है उसकी जानेब आ जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है हमारी जिंदगी के अंदर जो कि हम चाहते हैं कि भाई अगर हमें मौका मिलता, अगर हमारे पास ऑप्शन होता तो हम ये चीजें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल लेते। लाइक बहुत कुछ हमारी जिंदगी में ऐसा हो चुका होता है जो कि हम अक्सर बैठकर सोचते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन आ जाता, कुछ ऐसा हो जाता, कोई जादू हो जाता तो हम ये चीजें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल पाते। तो आज आप मुझे ये बताने वाले हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ का एक सीन डिलीट करने का चांस मिल जाए तो वो क्या होने वाला है। हाँ जी, क्योंकि हमने बहुत कुछ अपनी जिंदगी में ऐसा किया होता है, हम ये सोचते हैं कि भाई ये जो बहुत गलतियां हमने करी अपनी जिंदगी के अंदर अगर हमें ऑप्शन मिल जाए, हमें चांस मिल जाए तो ये चीजें हम दुरुस्त कर सकते हैं। और वो कौन सी ऐसी चीज, कौन सी ऐसी बात, कौन सा ऐसा सीन जो कि आपको लगता है कि ये मुझे अपनी जिंदगी से डिलीट करना चाहिए, मुझे बताइए जल्दी से। अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं पहली मरतबा रोजाना या फिर आप घुड़ने वाले लिसनर्स हैं चोरी चोरी चौके चौके हमें सुनते हैं तो भाई अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस, दीजिए अपना नाम, लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, आइए और आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए और बताइए कि हाँ जी भाई जान अभी हमारे साथ मौजूद है।

0: ओके जी, सो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लेकिन दिक्कत जरा यहाँ आ जाती है कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं. तो आपको घबराना नहीं है ना, आपके पास नंबर मौजूद है. नंबर है जनाब 03-15-799-0595. बुड़ी 315-79-5595 ही नंबर तुम डायल करो बाबा. डायल करेंगे तो आपके करीबी जनरल स्टोर पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे. तो अवेलेबल कराइए और वहाँ से जाकर इजिली परचेज करते जाइए. चाहे आप सखर से हैं, मोरो से हैं, मीरपुर खास वाले हैं, मटियारी से हैं, सकरन से हैं, माथली से हैं, जहां से भी आप हमारा शो सुन रहे हैं, आप बस ये नंबर डाल के जाइए और चुटकियों में अपने करीब जो है ना व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराते जाइए. ओके जी, इससे अच्छा मौका आपको और कोई नहीं मिलेगा कि आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराएं और वहां से जाकर आप परचेज भी कर सके. तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, डी स्किन में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको बताते रहेंगे. लेकिन आप हमारे साथ मौजूद हैं. वासा भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं. हेलो वासा भाई. चाचा खाली जुड़े जो आ चुके हैं. वालेकुम अस्सलाम बेटा से जो, बिल्कुल ठीक ठाक है. आप बताएं आप कैसे हैं. अब्दुल रजाक हमारे साथ मौजूद हैं. खुश आमदीद. हेलो. अच्छा ये शायर केसवर हमारे साथ हैं. वालेकुम अस्सलाम भाई जान, आपको खुश आमदीद कहते हैं. अदील खान फ्रॉम मोरो बेना मुझे तरफ खां मंजन जो सलाम कबूल हो जी अवां के अवां जो मोहब्बतू आइन भाव. नजीर को हमारे साथ मौजूद है बलोचिस्तान से. खुश आमदीद. फहीम शेख आ चुके हैं. वालेकुम अस्सलाम एंड मौला सलामद. नजीर खोसू कहते हैं बुरी नीयत के साथ बजाहिर किए जाने वाले अच्छे अमल को भी फल नहीं लगता है, लेकिन अच्छी नीयत के साथ किए गए छोटे से छोटे अमल को भाग लग जाते हैं. ये हमारे खोटे खरी नीयत ही तो है जो अंजाम बदल और अंजाम अंजाम बद और अंजाम खेर का बायस बनती है. बिल्कुल जी, सॼो दारो मदार जेको आहे न तव्हांजी नियतुनि ते आहे. सो नियत जेका अगरि तव्हां साफ़ रखंदा त बाबा मंज़िल ई आसान आहे, बाक़ी छो चवंदा आहिनि. बिल्कुल सॼो खेल जेको आहे न नियतनि जो अथव. और फहीम कहती हैं आज गाना सुनाइएगा. इहो गानो मता मां तव्हांखे न ॿुधायां, पर हिन सां रिलेटेड थोरो ॿियो गानो तव्हांखे ॿुधाईंदासीं. थोरो इहो आहे रूल असांजो, त थोरा जेके मतिलबु थोरो शिशोरे टाइप वारा गाना हूंदा आहिनि उहो थोरो असां घटि प्ले कंदा आहियूं, तव्हां ॾिठो हूंदो. सो इहो थोरो लिमिट क्रॉस वारो गानो आहे. अच्छा चाचा खालिद कहते हैं हमें ताने भी बहुत मिलते हैं, बट एडिक्ट हो गए हैं आपकी आवाज और शो के. अब आप बताएं हम कहाँ जाएं, आप बस हमारे साथ मौजूद रहिए, प्रोग्राम सुनते रहिए और आपने करना ही क्या है. अच्छा चनेसर थेबू हमारे साथ ही. वालेकुम अस्सलाम. ए एम अंसारी आ चुके हैं. वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू यू. अदील कहते हैं हजरत अली का फरमान है चार लोग हमेशा परेशान रहेंगे, एक मददगार और दूसरा वफादार और तीसरा साफ दिल और चौथा मुखलिस. बिल्कुल जी, तमाम सही चयो है. और अगर आपने अभी तक हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए जनाब. और किशोर भाई आ चुके हैं. वालेकुम अस्सलाम, क्या कहते हैं. स्मार्ट हाजरा अवां जी खिदमत में. पानी जो गिलास प्यारे भला. अच्छा ऐसा नार पानी हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम. ओ माय फेवरेट आजी, आप कैसी हैं. मैं ठीक हूँ जी, बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत हो गई हूँ व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगा के. और कहती हैं ख्वाहिश थी जल्दी जवान होने की, मालूम ना था खुशियाँ सिर्फ बचपन की मेहमान होती हैं. ए जिंदगी पलट जा बचपन की हसीन राहों में, ये नई दौड़ की राहें बहुत तकलीफ देती हैं. वाह वाह वाह वाह, शौक हुआ है ना वॾे थियण जो. हाणे मज़ा वठो. ओके जी, आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें मुझे बताइए जल्दी से. और साथ साथ आज मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछा है वो बिल्कुल ये पूछा है कि आप मुझे बताइए कि अगर आपको अपनी लाइफ का एक सीन डिलीट करने का ऑप्शन मिले तो वो कौन सा होगा. अक्सर औकात हम ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में अगर हम ये ना करते, ये सीन ना होता तो भाई कितना अच्छा होता. तो बिल्कुल वही पूछ रही हूँ, मुझे बताइए जल्दी से. टाइम हो जाता है, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी वापस आप लोगों के पास आते हैं. आपका हमारा साथ पूरे पूरे 3 बजे तक सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए.
1: जीए एफएम खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मरीजनि खे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घटि ॿुधण में अचणु शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-9196-8।
1: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचणंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569 03-00-33-8569।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर जनाब सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपकी सिद्राब के साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, शामली प्रोग्राम होते जा रहे हैं और जनाब अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं और इन्हीं प्यारे प्यारे एहसास के साथ आप लोगों के साथ हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक। ओके जी, इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप जरा बताइए मुझे कि जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं आज वो तमाम तो लोग मुझे ये बताइए, यानी कि आज के प्रोग्राम का जो मैंने आप लोगों से टॉपिक सवाल पूछ लिया है वो बिल्कुल ये पूछा है कि आप बता रहे हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ का एक सीन डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाए, कुछ ऐसे वाकयात हमारी लाइफ में होते हैं जिन्हें हम ना चाहते हुए भी जो है ना वो याद रखते हैं और वो हमसे भूलते नहीं है और हम चाहते हैं कि ये तो सीन हमारी लाइफ से कट हो जाए जरा, और उन सीन को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं ये तो हमें यानी कि पता नहीं, हमारे बस में नहीं ये चीज़। तो आज आप मुझे जरा ये बताइए कि अगर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाए, अगर ऐसा हो जाए वाकई, तो आप अपनी लाइफ का कौन सा सीन डिलीट करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं 888 और फेसबुक पर, तो जल्दी से अपने होने का एहसास दिलाइए 888 और फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन करते जाइए। अच्छा, फेसबुक वाले लोग जो है वो पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें भाई, बहुत जरूरी होता है, तो पोस्ट को लाइक और शेयर करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया। इसी के साथ साथ मैं जरा आप लोगों को बताने लगी हूँ व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन गया है आजकल, क्योंकि मार्केट में जब आप जाते हैं तो आप लोगों को जब बहुत ज्यादा वाले प्रोडक्ट नजर आते हैं तो उनमें आप लोगों को ये चीज सिलेक्ट करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कि हमने कौन से प्रोडक्ट लगाने, भाई हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। तो मैं हूं ना, मैं बताऊंगी कि आपने क्या करना है, आपने व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है और व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों की खूबसूरती है इतनी ज्यादा वाली आपको खूबसूरती मिलेगी, क्योंकि आप हमेशा से कोशिश करते हैं कि भाई काश हमें ऐसी वाली खूबसूरती मिल जाए, काश ऐसा हो जाए। तो बिल्कुल जी, व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को वैसी खूबसूरती मिलेगी जैसी आप हासिल करना चाहते थे, क्योंकि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं भाई, आपको हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है, जैसे कि आप लोगों के लिए फेयरनेस क्रीम है, नाइट क्रीम है, एक्ने ट्यूब है, साबुन है, फेस वॉश है, हेयर रिमूवल लोशन है और उसके अलावा लोशन भी है। इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हर तरह का प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो आपने बस यही करना है कि आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाएंगे, वहां से नाम लेकर तलब करेंगे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे उस हिसाब से ही जो है ना आपको खूबसूरती मिलेगी। देखा जाए तो अक्सर लोग जो है ना वो इस बात में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने पहले फलां क्रीम लगा ली थी लेकिन हमें रिजल्ट्स वैसे नहीं मिले थे। तो अगर आप वो फलां क्रीम को इस वाली व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम से कंपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत आप ज्यादती कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट से। आपने व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम पहले लगा कर देखनी है, पहले इतना इस्तेमाल करें फिर वही बात करें, तो बिल्कुल वही वाला सीन है। आप पहले लगाइए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप कितना अच्छा प्रोडक्ट लगाने वाले हैं। तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है जिसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करने वाले हैं, और व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम आपकी जल्द की खूबसूरती और निखार के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी ब्यूटी क्रीम है। ये जल्द को नरम, मुलायम और तरोताजा बनाने में मदद देती है। अगर आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे की खुश्की, दाग धब्बे और बेरोनकी जो है ना वो खत्म हो जाती है, जबकि आपकी जल्द जो है वो ज्यादा साफ और चमकदार महसूस होने लग जाती है। तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम में शामिल है जनाब एवोकाडो, एलोवेरा और मिल्क, ये जब चीजें इस क्रीम के अंदर ऐड की गई हैं तो आप लोगों को जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो बहुत ज्यादा नेचुरल मिलने वाले हैं। तो आप ट्राई करके देखिएगा, जो लोग नाइट क्रीम में लगाना पसंद करते हैं और जिन लोगों की उम्र हो चुकी है और वो लगाना चाहते हैं, बिल्कुल जी व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम आप बिल्कुल लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ एक और मजे की बात है, ये जब आप नाइट क्रीम नहीं लगा पाते हैं लेकिन आपको खूबसूरत भी रहना है, आपको खूबसूरती भी चाहिए, तो आपके लिए व्हाइट एश लवली क्रीम अवेलेबल है। और व्हाइट एश लवली क्रीम, अगर इसके बारे में आप लोगों को बताऊं मैं, तो व्हाइट एश लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम है। पणखा मठी ॾिसो ना हिकड़ी ॻाल्हि आहे, नंढपण खां वठी असां फेयरनेस क्रीम लॻाईंदा आहियूं, ऐं फेयरनेस क्रीम असांजे स्किन जे लाइ केॾी ज़रूरी हूंदी आहे। असां नंढा हूंदासीं त अमी असांखे फेयरनेस क्रीम लॻाईंदी, काॾे पार्टी में वञिणो हूंदो, शादी में वञिणो हूंदो, स्कूल वञिणो हूंदो, कॉलेज वञिणो हूंदो, बस फेयरनेस क्रीम लगाए बाबा असां रेडी आहियूं। सो अगरि तव्हां बि इहो चाहियो था त अगरि तव्हांजी उमिरि केतिरी बि आहे, तव्हांजे घर में ॿार आहिनि, तव्हांजे घर में टीनेजर्स आहिनि, तव्हां एजड आहियो, मर्द मायूं, सभु कोई को सुठो वारो प्रोडक्ट लॻाए, त उन जे लाइ व्हाइट एश लवली क्रीम तव्हांजे लाइ आहे।
वाइट एश लवली क्रीम जेका आहे न नॉर्मल फेयरनेस क्रीम आहिनि जहिड़ी नाहे, बल्कि हिन खे थोरो एडवांस तरीक़े सां तयारु कयो वियो आहे। जीअं तव्हां ॾिसो त वाइट एश लवली क्रीम जे अंदरि सनस्क्रीन बि एड अथसि, ऐं वाइट एश लवली क्रीम जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा त सनस्क्रीन जो छा फ़ाइदो तव्हांखे मिलंदो। जॾहिं सनस्क्रीन जेका प्रोडक्ट जे अंदरि एडी थियल आहे त हिन जो मतिलबु इहो आहे त हीउ तव्हांखे उस जेके ख़तरनाक किरणा हूंदा आहिनि उन्हनि खां बचाईंदो, तव्हांजी स्किन खे जेको आहे न प्रोटेक्ट बि कंदो। ऐं वाइट एश लवली क्रीम जे अंदरि 30 वाइटमिन्स जा कैप्सूल एड थियल आहिनि, जेके तव्हांजी स्किन खे जेको आहे न सफ़ा हीअं VIP बणाए छॾींदा। तव्हांजी स्किन ते जंहिं बि वाइटमिन जी ज़रूरत हूंदी न उहो उनखे ख़तमु करे छॾींदो, यानी की उहा कमी जेका न पूरी थी वेंदी। मुंहिंजो चवण जो मतिलबु इहो हुयो। ओके जी, सो वाइट एश लवली क्रीम अगरि तव्हां इस्तेमालु करणु चाहियो था त बिल्कुलु तव्हां इस्तेमालु कयो बाबा। ऐं वाइट एश लवली क्रीम जी हिकिड़ी मज़े जी ॻाल्हि आहे त गर्मियुनि जे लाइ हीउ प्रोडक्ट जेको आहे न मस्तु आहे। गर्मियुनि में अक्सर ॾिठो वेंदो आहे त असां इहो सोचींदा आहियूं त बाबा मेकअप बि नथा करे सघूं, गर्मियुनि में शादियूं बि जाम थींदियूं आहिनि, त अगरि तव्हां सां बि कोई अहिड़ो सीन आहे गर्मियुनि में तव्हांखे का ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे त तव्हां छा कयो, पर तव्हांखे ख़ूबसूरत बि ॾेखारिणो आहे, ख़ूबसूरत बि तव्हां रहणु चाहियो था, त तव्हां वाइट एश लवली क्रीम जो इस्तेमालु करे ॾिसो बाबा। फुल पैसा वसूल प्रोडक्ट अथव, हर कोई इस्तेमालु करे सघे थो, घर में सभु हिन खे इस्तेमालु कयो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो। उन खां अलावा डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आहे जेको तव्हांजे एक्नी खे ख़तमु कंदो, यानी की दाणनि खां तव्हां परेशान आहियो त डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आहे जेकी तव्हां ईज़ीली इस्तेमालु करे पंहिंजे चहिरे जे दाणनि खे गुड बाए करे सघो था। उन खां अलावा वाइट एश जो जेको आहे न साबुण बि अवेलेबल आहे, अगरि तव्हां साबुण लॻाईंदा त तव्हां वाइट एश जो साबुण लॻाईंदा, ऐं अगरि तव्हां फेस वॉश लॻाईंदा आहियो त वाइट एश जो फेस वॉश बि आहे। इन्हनि में फ़र्क़ु इहो आहे त वाइट एश जो जेको फेस वॉश आहे उहो वाइटमिन सी सां तयारु थियल आहे, ऐं जेको साबुण आहे उन में एवोकाडो, एलोवेरा ऐं मिल्क जेको आहे न उहे एड थियल अथसि। इहे आहिनि बाबा सभु ही प्रोडक्ट वाइट एश वारनि जा जेकी तव्हां बिना टाइम वेस्ट किए जेको आहे न इस्तेमालु करे सघो था ऐं पंहिंजी ख़ूबसूरती खे चार चंड लॻाए सघो था। सो बिल्कुलु तव्हां इस्तेमालु कयो, तव्हांजी ख़ूबसूरती तव्हां वटि वापसि अची वेंदी, उन खां अलावा तव्हां वधीक ख़ूबसूरत थींदा वेंदा। सो ख़ूबसूरत थियो बाबा, ख़ूबसूरतियूं हासिलु कयो, ऐं उन खां अलावा वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु कंदा रहो, ऐं टॉपिक खे फॉलो कयो, ऐं मूंखे ॿुधायो तव्हां किथां किथां असांखे ॿुधो पिया ऐं केरु केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे। ऐं हा, ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि, पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो। तव्हां छा पिया सम्झो?

ओके जी, हमारे साथ हैं यहाँ पर विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से, मोहम्मद हारून संदीलो भाई मोरो से आप हमें सुन रहे हो. ओके, बहुत शुक्रिया, वेलकम करते हैं. मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम. बेटा सिदरा, क्या हाल है आपके? सलाम सब सुनने वालों को, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद. ये मौजूद है हमारे साथ मुलायम सलाम अदद. छोटी बाजी, क्या हाल है आपके? सदाकत हुसैन मीरानी साहब, बच्चल शामियानी सखर से आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया भाईजान. मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? और चाचा खाले तमाम गाने जी फरमाइश किया ओका. और वफा अब्दुल गफ्फार खास के लिए हमारे साथ है न्यू जतोई. ओके जी, न्यू जतोई से कहते हैं कि मैं सीन डिलीट करूंगा. आपने तो पूरा इंसान डिलीट करना चाहा है, क्या बात है. इंसान डिलीट नहीं कर सकते भाई, कुछ सीन ऐसे होते हैं वो आप जो होते ना, वो जिन्हें आप भुलाना चाहते लेकिन भूल नहीं पाते, उन्हें डिलीट करना है. और उनके अलावा हैं जी साइमा मीर हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम. कहती माशाल्लाह मक्खन जैसी आज सदरा मुस्कान की आले शो मस्त मस्त है. और मुझे एक पंजाबी गाना सुनाओ प्लीज बाय मलकू. ओके ओके, पंजाबी गाना सुनते हैं आज. और उसके अलावा आपको भी खुश आमदीद करते हैं. अच्छा चाचा खालिद कहते हैं मैं अपनी जिंदगी से स्पेशली फेक लोगों को जो ना वो डिलीट करूंगा. ये टॉपिक आंसर, आपकी लाइफ में भी फेक लोग हैं, क्या बात है जी. ये फेक लोग आते कहाँ से इतने सारे जो सारे लोगों की जिंदगी में है. इन्हन के बैठे कुटकी नहीं अन घुर्जे. क्या मतलब, मैं कुछ नई बात करने लगूं तो आपको ये लगा क्या कि सिद्रा का नया शो आ रहा है? बस करें भाई. आई नो, समझ रहे मार्केट में डिमांड है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं. अच्छा अब्दुल अहद अब्बास की मर्सद मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद कहते हैं. पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए. उदास लड़की कहती है अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम अदद, कैसी हो प्यारी जानी, वेलकम टू शो. टॉपिक, जिस दिन मेरे बाबा की डेथ हो गई थी ना, वो दिन वो पल वो टाइम सब कुछ डिलीट करना चाहती हूँ. अरे भाई कैसी बातें कर रही हैं. और ए एम अंसारी क्या कहते हैं टॉपिक पर, मुखलिसी जुर्म है यहाँ, हो सके तो मुनाफकत की जाए, मुखलिसी ने सारे अंदर की कैफियत का बेड़ा गर्क किया हुआ है. यह तो मसफा भली गाल करे सनी, आई जेको मानू मुखलिस हुंदो आहे ना, उहो ई सब खां घणी तकलीफ़ूं ॾिसंदो आहे. इहा शइ जेको आहे न, अॼुकल्ह मूं नोट कई आहे. वॾा थी विया आहियो न हाणे, समुझो था.

बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो आप कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं ये आप तो बात मुझे बताते ही नहीं है. क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं बताते? ना पक्का छू थी व्यायो अलस नहीं डोर डींदो थे जेको पूछा सब उदाय से डींदा कर. अच्छा मोहम्मद जमान भाई आ चुके हैं. हेलो. अच्छा नियाज हुसैन मलिक हमें सुन रहे हैं. हेलो.

क्या बात है जनाब, क्या बात है, किसकी? व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स की इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे भाई नहीं, क्यों नहीं इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए। अच्छा मां जी को ना थोड़ी कमजोर आए, हम थोड़ी ना कुछ ज्यादा है, सो मुझे डाटी दिल चौंधिया माँ सब कम मतलब सबने क्या कराया। और अब्दुल्ला हद कहते हैं कि कफनते प्रिय जी पवंदी खुशबू दोरन में कुछ उजाला भी होंदा, दुखायल दिलन जी दुआ भी मिलंदी, अहद जख्म कुछ आला भी होंदा। वाह वाह वाह वाह, मुझे थोड़ी सिंधी जेका कमजोर आए, सुबह माफ कजो।

बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। देखिए सोना सोना मानो सा के बुधन पया जिते जिते मुझे आवाज वने पयो गोठन में शहरन में जिते किथे मुझे आवाज तमाम बुधो पया ता पांचे करीबी जनरल स्टोर से वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अवेलेबल कराईंदा रहो। आई डायल कयो 03-15-799-0595 बड़ी ट्रेस 15-79-595 ठीक है समझी अरे वाह होशियार आयो। अच्छा मीर अयाज बलोच हमारे साथ कहते नाइस योर शो थैंक यू। दर्दे दिल कहती हैं कि ना तुम जिंदगी की कीमती तरीन लोगों में से हो। अच्छा इसको दोबारा पढ़ते हैं थोड़ा गलत हो गया। कहती हैं कि तुम मेरी जिंदगी की कीमती तरीन लोगों में से हो। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा अपने अमान और हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन हमेशा सलामत रखे। ऐसे ही हंसती और मुस्कुराती रहो। आमीन थैंक यू मेरी जान बहुत शुक्रिया। अच्छा जाहिद अली बुर्दी हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम हेलो। अच्छा मुजाहिद बोजार कहते हैं टॉपिक मैंने बचपन में एक दोस्त को बहुत मारा था आज तक पछतावा है कि काश दोस्त को मारता नहीं। अब तो वो माशाल्लाह बड़ा हो गया है वो मुझे बार बार याद लाता है सो वो सीन में डिलीट करना चाहता हूँ। और ओके ओके ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूंगी।

0: के लिए हमें सुन रहे हैं नवाब शाह से. वालेकुम अस्सलाम भाई जी, वेलकम करते हैं आपको भी, खुश आमदीद. ओके, इसके अलावा यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जाइए 888-1 और फेसबुक पर आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस जो कि हमारे प्रोग्राम की रौनक है. और इसी के साथ साथ टाइम हो जाता है जरा हम यहाँ पर जो है ना वो न्यूज ब्रेक की जानिब जाएंगे. उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, वापसी जल्दी आप लोगों के पास. तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए. आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाते रहिए, खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए.
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज.
2: मुख़्तलिफ़ रस्तनि तां गुज़ारियो वेंदो. जलूस पास शहीद आयतुल्ला खुमनाई जो मड़ कुम मुंतकिल कयो वेंदो. ईरानी सदर मसूद पज़िशान चयो आहे त शहीद रहबर सेखारे छॾियो त ईरान जो अज़ीम सरमायो आवाम ऐं इतिहादु आहे. असां ईरान जी इज़त तरक़ी ऐं आज़मत वारे रस्ते ते हलंदा रहंदासीं.
3: होटल जो मकसद पर ॾेई सीड़पकारीअ खे हथी ॾियण आहे. नाणे वारे वफ़ाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त पाकिस्तान में सीड़पकारीअ जा घणा मौक़ा मौजूदु आहिनि. इन्वेस्ट पाक होटल सां सीड़पकारनि लाइ आसानी पैदा थींदी.
2: वॾे वज़ीर मुराद अली शाह सां इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जी पाकिस्तान में मुख्य डायरेक्टर जी मुलाक़ात. सिंध में आलमी डेटा सेंटर्स जे क़याम ऐं मुतबादल एनर्जी वारनि ज़रियनि ते ॻाल्हियूं. वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त नंढनि आबादगरनि खे ग्रुप जी सूरत में सब्सिडी वारे ट्रैक्टर फराहम कया वेंदा. आबादगारनि जी तरबियत बि ज़रूरी आहे.
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज.
4: हर चेहरो पंहिंजी अलॻि सूरत.
5: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि. एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर. वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3 85-569-0300-3855-69.

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437 2 0242460100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
4: न अदा।
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आहे।
4: अदा जल्दी कर मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
5: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

से हम आपकी खूबसूरती को मेंटेन रखेगा, बल्कि आपकी खूबसूरती जो कहीं गायब हो चुकी वो वापस भी आ जाएगी और आप लोगों की स्किन चमकना दमकना शुरू हो जाएगी, वो भी पता है सिर्फ दो दिनों के इस्तेमाल से। यानी कि अगर आप दो रातें इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए तैयार की गई है। एक मयारी ब्यूटी क्रीम है, ये जल्द को नरमी जो है ना वो फराम करती है और चेहरे को नरम मुलायम और तरोताजा रखने में मदद देती है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं रोजाना डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आपकी जल्द की जो रौनक है ना वो भी आपको वापस मिल जाती है और आपकी स्किन जो है ना वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ दो दिनों के इस्तेमाल से। क्या बात है, ना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि भाई जदीद अज़ा से ग्लूटाथायोन मौजूद है और उसके अलावा रात भर जो है ना ये आपकी स्किन को चमकाने का काम करेगी, जबकि आपकी स्किन अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा ये आंखों के हल्के पड़ चुके हैं, बहुत ज्यादा ऐसे निशानात आ चुके हैं जिन्हें आप रिमूव करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जो कि आपके चेहरे पर आना स्टार्ट हो चुकी है और आप उन्हें खत्म करना चाहते हैं, तो आपके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना

जी किशोर भाई कहते हैं कि अदी अदा इतनी सी डब्बी में इतने सारे फायदे, वाओ हाँ छोटा पैक बड़ा धमाका, तो आपने सुना ही होगा, बिल्कुल हुआ कार तो लगाईंदा था ताकि ना खबर पंदी बाबा बाकी केडा सारा फायदा जेके तमाके मिलणा आहे। ओके जी, सो तमाम लाजमी ट्राई करी दिसो, उन खां अलावा असे सगड मौजूद आहेन जी तमाचा फीडबैक्स आहेन। ओके ये हमारे साथ ही आई एम फाइन सदाकत हुसैन मीरानी साहब बच्चल शामियानी सखर से कहते हैं कि शो आपका अच्छा है और कहते हैं कि अंगूठी में नगीना फिट हो जाता है, शो में आवाज फिट है। सखर में व्हाइट एश क्रीम के प्रोडक्ट्स किस शॉप से मिलेंगे जरूर बताइएगा शो में। अच्छा चले मैं आपको ये बताऊंगी कि सखर में आप अपने किसी भी करीबी जनरल स्टोर पर जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। अगर वहां पर ऐसा फर्ज करेंगे नहीं मिल रहे तो जो नंबर आपको मैंने अभी अभी बताया ना उसके ऊपर आप रब्ता करके उनसे जरा मालूम कर लीजिए कि सखर में आपको कौन कौन सी जगहों पर मिलेंगे व्हाइट एश के प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन के प्रोडक्ट्स। ओके जी, वफा अब्दुल गफार खास केली कहते हैं आप कैसी हैं, आपका शो वीआईपी है और आज आपने टॉपिक भी वीआईपी रखा है। चलिए टॉपिक तो वीआईपी रखा है, आपने फॉलो तो किया ही नहीं। अच्छा विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगोजा से दिलावर हुसैन सोलंगी बाजी सिद्रा आप कैसी हैं बाजी, एक सीन तो नहीं जो डिलीट किया जाए, फिर भी डिलीट करने वाला सीन सिद्रा। अच्छा सिद्रा होगी जो हमें नींद भी नहीं करने देती है, आज हमें मुमताज मलय का गाना सुनाइएगा। चले मां कोशिश कयां थी तां जो गानो हलाईंदासी। तमा चवा डेडिकेट ड्राइवर नजीर सोलंगी, आसिम सोलंगी, अलीजान सोलंगी, आसिफ एंड अल्लाह वसायो सोलंगी जे नाले ठीक हो गया जे। और सायमा कहती है सिडो प्यारी लगता है तुम्हें, नन्ना एकड़ी गाल हाने मां डठो तवां जो मैसेज, तवां जेको मैसेज न सिर्फ मलकू ताई होयो उन खां पर तां जो मैसेज जेको न मिसिंग पार्ट थी वे शायद मुखे लगो तो मैसेज सिर्फ एतरो ही होयो, सो तां जो जेको टॉपिक हो ना वो मैसेज में आयो ही ना हो। मैं नन्ना मुना राई देश का सिपाही हूँ, हाँ तो अच्छे से जानती हूँ। और गुस्सा ना करें, गुस्सा ना करें। और शोनी आज अपने रूम में बैठकर सुकून से आपका शो सुन रही हूँ, आपका सुकून तबाह करने आको। ओके जी, आशिक खास के लिए हमें सुन रही है नवाब शाह से वालेकुम अस्सलाम कहते हैं जी आपको।

0: ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 0300-002734। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-3865-453।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
6: 0301-3992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी FM 88 नेटवर्क। मौजूद है हमारे साथ सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपकी सिद्धराव के साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, शामली प्रोग्राम होते जा रहे हैं और अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं। ओके जी, तो हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में और जिन लोगों ने अभी अभी सुना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम इन खुशामदीद। आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया।

ओके जी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना यहाँ पर आप एंजॉय करें, और साथ साथ जनाब आपको ये भी बताएंगे कि प्रोग्राम में आप लोगों के लिए व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप लोग जानते हैं और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानते हैं, तो अगर थोड़ा सा मजीद जानना चाहते हैं तो वो बताएंगे आपको। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताती चलूँ कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम वो लोग जो कि सेंसिटिव स्किन होने की वजह से कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा पाते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए है जनाब, आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स मौजूद है। माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन से तैयार किया गया एक ऐसा शानदार सा प्रोडक्ट जो ना सिर्फ आपकी खूबसूरती को मेंटेन करता है बल्कि आपकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाता है, आपकी खूबसूरती की हिफाजत करता है। चाहे आप मर्द हजरात हो, चाहे आप खवातीन हो, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल कर सकता है, अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकता है। इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है, जो की हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, आपकी स्किन को क्लीन करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है।

ओके जी, बहुत ही प्यारा गाना यहाँ पर आपने इंजॉय किया. एक और गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है, ये वाला गाना भी हम सुनेंगे. और आप लोगों के जितने भी गाने हैं फरमाइशों वाले, वो मैंने लगा लिए हैं भाई जान, आप इंजॉय करते रहेंगे. और ये गाना है जी होमेरा चना की आवाज में. जाहिद अली बुर्दी कहते हैं एवन शो गुड शो सिदरा मुस्कान जो जियो करे से, हाओ बाबा जियो करे से. और नदरी कहती है हाँ भाई कुछ बात ऐसी होती है जो बताई नहीं जाती. और लुबी कहती है अस्सलाम वालेकुम सरोज जानी, क्या हाल है, मैं भी आपके साथ साथ नाइस हूं. थैंक यू सो मच हमारी प्यारी लुबी. जावेद अली रिंद में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम.

अनवर भाई यदि माशाल्लाह हिन पेज जा 10 के फॉलोवर थी वया ने इनके 10 साल थी वयो वदनी कोन था ये जान घुरी अला केडो मसलो थे अच्छा इमरान अली अब्बास ये मैं सुन रही हूँ वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई कैसे हैं ठीक ठाक हैं

अच्छा मोहम्मद ज़मान भाउ तव्हां जा जेके टॉपिक वारो कमेंट हो मूंखे मिलियो ई कोन शायद या मूं ॾिठो न हूंदो हुनखे वराए शेयर करे छॾियो तव्हां सनाउला बिरोही भाई में सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम अदी ठीकु आहे तव्हां ॿुधायो भाउ कीअं आहियो मिठो सुमरो हमारे साथ है मिस्त्री मिठो सुमरो फ्रॉम खानपुर महर से शो सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया जी अच्छा एसन कहते वीचारे की रोजी ते लतन डो बो कम ना ही इन का माशाल्लाह चो हकीकत आ मुख्य सिर्फ बकबक करनी है बो को कम ही नहीं सो किस्मत से अगर बस समझी आऊं शाहनवाज अली खास के लिए मैं सुन रही हूं वालेकुम अस्सलाम अदा चाला ताजो खुश आयो प्रोग्राम तवा के पसंद अच्छी पयो सो मोहब्बतू आइन तवा जी इमरान अली अबासी कहते हैं खुदा हर उस शख्स को सुकून दे जो अपनी हालत किसी को बता नहीं सकता बिल्कुल ता भली गाल कही

ईशोर भाई जी त कुछ माण्हू सवायो कढ पइजी विया अलाह ईशोर तोबा वफ़ा शेह ज़ादो मक्सीअ में सुन रहे हैं खुशामदीद भाई जान तव्हां असांखे लाड़काने खां ज्वाइन कयो आहे सोमबतूं आहिनि और दर्द दिल कहती है कि हाय सिद्रा तीन शो होंगे तो एक शो 10 से 11 दूसरा 1 से 3 और तीसरा 5 से 6 दिन भर आप हमारे साथ रहेंगी हाँ हाँ ॿियो कम कार कोन्हे वो गानो जल्दी खत्म थी अच्छी चीजें जल्दी खत्म हो जाती है और ए मंसारी कहते हैं नफरत भी तुमसे क्यों करें इतना भी वास्ता क्यों रखना आईली मुझे भी यह सोच हूँ तो बस छड़े दिनों तो बस छड़े दिनों नफरत में छा करणी फहीम कहते हैं असांजो वारो ईंदो या न अॼु तव्हां गानो अहिड़ो चयो आहे जेको असां थोरो न हलाए सघंदासीं

0: मजबूरी।
1: अच्छा दर्दे दिल कहती है टॉपिक कोई हिस्सा नहीं, कौन कौन सा डिलीट करूंगी, ऐसे बहुत सारे सीन हैं भाई हमारी जिंदगी में, क्या बात है भाई क्या बात है। और उनका अलावा अच्छा अन्या भी टाइम था वो पोस्ट के लाइक एंड शेयर करी बैठो।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना यहाँ पर आप इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं. व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो अगर अभी तक आप लोगों ने डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं लगाई और डी स्किन फेस वॉश नहीं लगाया तो लगाइए ना, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके एरिया में नहीं मिल रही, तव्हांजे ॻोठ में, तव्हांजे शहर में, तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर से नथी मिले, त पोइ तव्हां डायल कयो 03-15-799-0595 ॿुड़ी 315-79-595 ओ इते रखेसि.

हाँ दर्दे दिल वरी तव्हां सुभाणे फरमाइश कजो ठीक आ और हमारे साथी जी हमारी फजीला सिंधी वालेकुम अस्सलाम आपको खुशामदीद कहते हैं तव्हां जी शायरी जेका आहे न उहा मथे प्रोग्राम में पढ़ूं था ठीक आ सो थोड़ो इंतजार कजो अच्छा ये हमारे साथी गोठ उस्मान शर खां करीम बख्शर ज़ैन अली शर छो तव्हां जो नाइस आहे प्लीज प्ले फोज़िया सुमरू ओके भाउ तव्हां जी पसंदि हलाइण जी कोशिश कयूं था टाइम बची वियो त एरम कहती है दिलबर आप ही जवाब में अरीबा को डिलीट करूंगी इतना प्यार देती है जो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती हूँ आप भी जवाब दीजिएगा वैसे इहो बि वाकई इहो थींदो आहे अगरि को ज्यादा प्यार ॾींदो आहे न पोइ असां सोचींदा आहियूं असांजो जेको मतिलबु नर्वस सिस्टम आहे न उहो थोरो नर्वस थी वेंदो आहे ज्यादा प्यार बि असांखे मतिलबु जेको आहे न हज़म नाहे थी सघंदो सो अहिड़ा माण्हू बि वाकई थोरो घटि वणंदा आहिनि मतिलबु मां उहो माण्हू आहे जेको मतिलबु चवंदी आहियां लिमिट में हुजे हर शइ चाहे उहो प्यारु हुजे नफ़रत हुजे हर शइ लिमिट में हुजे ओके जी ये मौजूद है सिदरा जी अठहत्तर मोरी से मीरपुर खास अठहत्तर मोरी मीरपुर खास से राजा हमीरचंद हैं किशोर कुमार हैं हीरा लाल हैं फौजी सवाई लाल गणेश चंद आज अच्छा गाना लिखाया आपने ठीक है बहुत शुक्रिया

अच्छा नदिनी कहती है कि इश्क करने वाले लोग जान भी दे सकते हैं ऐसा मुझे लगता है, लेकिन देनी नहीं चाहिए, जिसके लिए देंगे ना वही इंसान समझ रहे अच्छा दर्द दिल लिखती है कि मानो खुश रहण जो दुआओं भी ॾींदा वरी खुश ॾिसी हसद भी कंदा, ईअं भला छो, इहा हक़ीक़त आहे दुनिया जी।

0: फहीम कैसी बातें कर रहे हैं.
1: तुझ पे क्या क्या मुझे मान का.
0: अच्छा अखलाक भाई कहते हैं ना गर्मी में हथ वारो पखो न ताणी सघूं वरी क्रीम हणो ॾिसो ये जेके आलसी माण्हू हूंदा आहिनि ये सफ़ा कारा थी वेंदव अला गर्मी जे एंड ताईं.

आप राजा नहीं है ना। हाँ राजा हटा दें आप, ठीक है। एसन के दे मतलब तो हाँ बिल्कुल यह गाल थोड़ी अजीब लगंदी आहे। ए मंसारी के ते असा नफरतन जा एतरा आदि थी वया आयूं जो केर मुखलिसी सा पेश अचे त ड्रिज तो थिए त अदाकारी द कोन पयो करे। बिल्कुल इए या इए या इए या सफा मुझे ना मिली। ओके जी साजिद हुसैन सुमरू हमारे साथ हैं। भाव वालेकुम अस्सलाम प्रोग्राम बुधो पिया आई तमा के बुधाईंदासी त बिल्कुल तमा जिलाए मार्केट में सा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अवेलेबल करायो आहे। आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर अन्य तई तमा इस्तेमाल कोन कया त अल्लाह तमा पान सा डाडो जुल्म कयो पया। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल कयो जिया तमा सफा सोणा सोणा थी वणो आई गर्मी में भी तमा लगाए सगो था आई तमा सोणा थी सगो था। उन खा अलावा फहीम केते सिद्रा एक गाल समझ में ना आई आखिर में अच्छा चवंदा आहिनि न मतिलब हेतिरो ख़्यालु रखो पंहिंजो हेतिरो मायूं चवंदी आहे ओ हेॾो सॼो ख़्यालु रखंदा कयो पंहिंजो। सो बिल्कुल इहो चवण जो टाइम अची वियो आहे। सो मां खां इजाज़त वठूं था वरी इनशाला तव्हां सां मुलाक़ात जेका आहे मुंहिंजी थींदी 5 बजे खां वठी 6 बजे ताईं, ठीकु आहे। 5 बजे खां 6 बजे ताईं तव्हांखे वरी दुबारा जॉइन कयूं था। सो पंहिंजो ओ हेॾो सॼो ख़्यालु रखंदा किथे का ग़लती थी हुजे थोरो लफ़्ज़ ॻाल्हाइजो जेको तव्हांखे सुठो न लॻो हुजे हुन लाइ माज़रत कयूं था। सो मोकिलाणी नाहे बाबू सिन सलामत सां सलामत अला हाफ़िज़ बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।

रस्मनि ताईं बादल रहंदियूं। अमरीकी सदर ट्रंप तस्दीक करे छॾी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट सां ॻाल्हाईंदे ट्रंप चयो त ईरान

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: सेखारे छो तो ईरान के अजीम सरमायो अवाम इतिहाद है अस ईरान की इज्जत तरक्की अजमत वाले रस्ते से हल्दा रही। हुकूमत सणपकार की हर मुमकिन सहूलतू दिन पुरजम है। इन्वेस्ट पार्क पोर्टल जो मकसद परडे सणपकार की हथी दियण है। नाणे वाले वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब है तो पाकिस्तान में सणपकारी जहां घना मौका मौजूद है। इन्वेस्ट पार्क पोर्टल से सणपकार आसानी पैदा थी।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-383-569-0300-333-8569।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569-03-00-33-8569।

0: मेरा
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर
1: कंदासीं सिंतास पुआइदे ठा न कंदासीं जी बीबी वडे वजीर जे हलम परदाज तकरीब के खिताब कंदे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चयो त पाक फौज जंग में भारत के इबरतनाक शिकस्त डिनी भारत का शिकस्त हजम न थी रही आहे भारत हाणे इसराइल मारण अख्तियार कयो आहे मोदी अफगानिस्तान ज़रिए पाकिस्तान में मुदाखलत करण चाहे तो पाकिस्तान जी आवाम मुतहद आहे दुश्मन जो हर साज़िश नाकाम कंदो जीबी में आवाम सां गॾु वाइदा भाणींदासीं समूरनि जमायतुनि सां गॾिजी कमु कंदासीं ईरान जे शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमेनी जो आख़िरी रस्म जारी मड़ खे जलूस जी सूरत में मुसल्ला मस्जिद खां क़ौम मुंतक़िल करण वारो सफ़र जारी मड़ खे लखे सोग वारनि पारां अलविदा कयो पियो वञे जलूस बाद शहीद आयतुल्लाह खुमेनी जो मड़ क़ौम मुंतक़िल कयो वेंदो ईरानी सदर मसूद पज़ेशान चयो आहे त शहीद राहबर सेखारे छॾियो त ईरान जो अज़ीम सरमायो अवाम ऐं इतिहादु आहे असां ईरान जी इज़त तरक़ी ऐं अज़मत वारे रस्ते ते हलंदा रहंदासीं ईरान सामन ॻाल्हियूं खुमेनी जी आख़िरी रस्मनि ताईं मअतल रहंदियूं अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट सां ॻाल्हाईंदे ट्रंप चयो त ईरान जूं समूरियूं आला शख़्सियतूं जनाज़े में मौजूदु आहिनि चाहियूं था त खेनि ख़तमु करे सघूं था पर असां ईअं नथा कंदासीं पोइ

पिण लाइ केरु बचंदो? हमास गज़ा में ॿिनि ॾहाकनि खां हुकूमत कंदड़ बाडी टोड़े छॾी। गज़ा जो कंट्रोल फलस्तीन जे टेक्टोक्रेट कमेटी हवाले करण जो रस्तो हमवार। हमास जे फ़ैसिले जी फलस्तीनी ग्रुप्स पारां आज़ी आहे। हमास चयो त गज़ा ते हुकूमत कंदड़ बाडी खे टोड़ियो वियो आहे। हुकूमत सीड़पकारनि खे हर मुमकिन सहूलियतूं ॾियण लाइ पुरज़म आहे। इन्वेस्ट पार्क कॉरिडोर जो मक़सदु परॾेही सीड़पकारीअ खे अती ॾियणु आहे। नाड़े वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त पाकिस्तान में सीड़पकारीअ जा घणा मौक़ा मौजूदु आहिनि। इन्वेस्ट पार्क पोर्टल सां सीड़पकारनि लाइ आसानी पैदा थींदी। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह सां इंटरनेशनल फिनांस कॉर्पोरेशन जे पाकिस्तान में मुख्य डायरेक्टर जी मुलाक़ात। सिंध में आलमी डेटा सेंटर जे क़याम, मुतबादल एनर्जी वारनि ज़रियनि ते ॻाल्हियूं। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त नंढनि आबादगारनि खे ग्रुप जी सूरत में सब्सिडी वारा ट्रैक्टर फराहम कया वेंदा। आबादगार जी तरबियत बि ज़रूरी आहे। गिलगित बल्तिस्तान जे वॾे वज़ीर एडवोकेट अमजद हुसैन उहिदे जो हलफ़ खणी वरितो। गवर्नर महदी शाह अमजद हुसैन खे उहिदे जो हलफ़ खणायो। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि तक़रीब में शरीक थियो। जेबी जे वॾे वज़ीर अमजद हुसैन चयो त गिलगित बल्तिस्तान जा मसला हल करणु पहिरीं तरजीह हूंदी। इस्लामाबाद में पाक फिज़ाया जे ग्रुप कैप्टन आसम तारिक़ खे शहीद करण जवाबदार जा सीसीटीवी फुटेज साम्हूं अची विया। जवाबदार खे कैप्टन आसम तारिक़ खे शहीद करण बाद दुकान तां नई शर्ट वठी तब्दील कंदे ॾिसी सघिजे थो। जवाबदार गुज़िरियल ॾींहुं पाक फिज़ाया जे ग्रुप कैप्टन खे शहीद कयो हो। लाहौर में ॿिनि परॾेही औरतुनि जे अगवा ऐं ज़्यादती वारे केस में अहम अकबर आई। परॾेही औरतुनि सां इज्तिमाही ज़्यादती जी तसदीक थी वई। टिनि जवाबदारनि जा डी एन ए मैच थी विया। पुलिस ज़रियुनि मूजिबि जवाबदार नवाज़ साजिद ऐं सिकंदर जा जुज़ा मैच थी विया आहिनि। जवाबदार नवाज़ सभ खां पहिरियां औरतुनि सां ज़्यादती कई। अठ जवाबदारनि जा डी एन ए सैंपल वरिता विया आहिनि। लखी गुलाम शाह भरिसां जतोई ऐं महरदुरिन में ॿीहर तकरार बाद पुलिस जो ऑपरेशन मुबैना तौर ते मार्टर गोला लॻण सबबु ॿ नींगर मारिजी विया। पुलिस चयो आहे त धुरिन में तकरार बाद ऑपरेशन कयो पियो वञे। पंज जवाबदार गिरफ़्तार कया आहिनि। गोठणनि चयो त ॿई नींगर पुलिस जा मार्टर गोला लॻण सबबु मारिजी विया आहिनि। सिंध में पाणी कोट संगीन थी वई। आबादगारनि जा मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। घोटकी में आबादगारनि जो पाणी कोट ख़िलाफ़ एहतजाज। टिकराटो में बि आबादगारनि पाणी कोट ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो कयो। टणोबागो में बि आबादगारनि पाणी कोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। कंदकोट में मुराद शाह जे आबादगारनि पाणी कोट ख़िलाफ़ इंडस हाईवे ते धरणो हयो। कानपुर महर में बि मुख़्तलिफ़ वाहन में पाणी कोट ख़िलाफ़ आबादगारनि धरणो हयो। पुछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। खैरपुर शहर मां गुज़रंदड़ मीरवा केनाल मां नामालूम शख़्स जो लाश शहर इलाइक़े वासनि लाश ॾिसी पुलिस खे इतलाउ कयो। पुलिस पहुची लाश अस्पताल मुंतकिल कयो। कनकोट में रिसालदार शाही वाह में ॿुड़ी फोतियल ॿार जो लाश शहर ते मकाई माण्हुनि खे घेटो शाख मां ॿार जो लाश मिलियो। चंडोला यार में हथकलियूं हटाइण तां इंतिज़ामिया ऐं दुकानदारनि में छिकताण। दुकानदारनि जूं पुलिस सां चकरियूं। पुलिस जी लठबाज़ी। कुझु दुकानदार गिरफ़्तार। इंतिज़ामिया मौजूदु अदालती हुकुम ते हथकलियूं हटाए रहिया आहियूं। दुकानदारनि चयो आहे पुलिस ज़्यादती करे रही आहे। दादू में पीअण जे साफ़ पाणीअ खां महरूम टीहनि ॻोठनि जे रवासनि जो पैदल मार्च धरणो। मुतासिर ॻोठाणनि पैदल मार्च करण बाद डीसी ऑफिस वारो धरणो हयो। ॻोठाणनि जो चवणो त केतिरनि ई सालनि खां इलाइक़े में साफ़ पाणी फराहम न थी रहियो आहे। मुतासिर ॻोठनि खे पाणी फराहम न थियो त तहरीक हलाई वेंदी। ठठो वेझो दाब जी वटि मंदशाह सां मिलियल कार ड्राइवर जे कंट्रोल मां निकिरी कल्टी। ॿ ॼणा फोत। तेज़ रफ़्तार कार मुसाफ़िर वेन सां टकराइण बाद कल्टी थी पई। ॿ ॼणा फोत ऐं पंज ॼणा ज़ख़्मी थिया। पुलिस पहुची लाश ऐं ज़ख़्मीनि खे अस्पताल मुंतकिल कयो। मंदशाह तेवील में वरिती वई। फुटबॉल वर्ल्ड कप जे प्री क्वार्टर फाइनल जारी। पंज भेरा फुटबॉल जे आलमी चैंपियन रहंदड़ ब्राज़ील जी टीम इवेंट खां ॿाहिरि थी वई। नॉर्वे ब्राज़ील खे हिक जे मुक़ाबले में ॿिनि गोलनि तां शिकस्त ॾेई इवेंट खां ॿाहिरि करे छॾियो। इंग्लैंड दिलचस्प मुक़ाबले बाद मेक्सिको खे ॿिनि जे मुक़ाबले में टिनि गोलनि तां शिकस्त ॾिनी। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड जो मुक़ाबलो नॉर्वे सां थींदो। कैनेडा, मेक्सिको ऐं ब्राज़ील शिकस्त बाद इवेंट खां ॿाहिरि थी चुकियूं आहिनि।

0: ऐं नॉर्वे जी फ़ौज बि फुटबॉल मैच में ब्राज़ील खे हराईंदड़ क़ौमी टीम जे जशन में शामिल थी वई। नॉर्वे जी टीम जो वॉकिंग रोड जो जशन जो वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल। वीडियो में नॉर्वे जे फ़ौजनि खे वॉकिंग रोड जशन मल्हाईंदे ॾिसी सघिजे थो। नॉर्वे जी टीम ब्राज़ील शिकस्त ॾेई इवेंट खां ॿाहिरि कढी छॾियो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385 569 0300 003 8556 9।
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320 180 00003।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न? अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

पाकिस्तान खिलाफ़ मोदीअ जी साज़िश नाकाम बणाईंदासीं, सिंधूअ जो पाणी रोकियो वियो त जंग कंदासीं, सिंतास मुआदे ते ठाह न थींदी। जी पी में वॾे वज़ीर जी हलफ़ बरदारी तकरीब खे ख़िताबु कंदे पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी जो चवणु हो त पाक फ़ौज जंग में भारत खे इबरतनाक शिकस्त ॾिनी। भारत खां शिकस्त हज़म न थी रही आहे, भारत हाणे इसराइली मॉडल अख़्तियार कयो। मोदी अफ़गानिस्तान ज़रिए पाकिस्तान में मुदाख़लत करणु चाहे थो, पाकिस्तान जो अवाम मुतहद आहे, दुश्मन जी हर साज़िश नाकाम कंदो। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम सां कयल वाइदा पाणींदासीं, समूरनि जमातुनि सां गॾिजी कमु कंदासीं।

ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई जो आखिरी रस्मू जारी मड के जलूस की सूरत में मसलाए मस्जिद का कुम मुंतकिल करने वो आखिरी सफर जारी मड के लखें सोगवार पारा अलविदा किया पे वे जलूस बाद शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई जो मड कुम मुंतकिल वो ईरानी सदर मसूद पशक्यान है तो शहीद रहबर सेखारे छो तो ईरान जो अजीम सरमायो अवाम इतिहाद है असा ईरान की इज्जत तरक्की अजमत वाले रस्ते से हलंदा रही। ईरान से अमन गाल खामनाई की आखिरी रस्म तुअल रहंद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तस्दीक कर छी अमरीकी न्यूज वेबसाइट से ऐसे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो चवण हो तो ईरान जो समूर आला शख्सियत जनाजे में मौजूद हैं चाहूँ था तो खेन खत्म कर सकूँ था पर अस इं न कंदी गाल केर न बच। हमास गजा में बिन दहाकन का हुकूमत कंदड़ बाडी टोड़े छड़ी गजा जो कंट्रोल फलस्तीन के टेक्नोक्रेट कमेटी हवाले करण जो रस्तो हमवार हमास के फैसले की फलस्तीनी ग्रुप्स पारा आजियां हमास चयो आहे त गजा ते हुकूमत कंदड़ बाडी के टोड़ो वयो आहे। डेवोल्यूशन बाबत सेनेट के फंक्शनल कमेटी जो इजलास 16 साल का सूबाई कोटा ते अमल न थियण जो इंकशाफ

0: चाइनीज़ सूबनि में पौणा 3 लख नौकरियुनि ते वफ़ाक पारां कोटा ते अमल न करण जी तस्दीक। सिंध जूं 1 लख नौकरियूं बि शामिल। कमेटीअ तरफ़ां 1 खां 16 ग्रेड जी नौकरियुनि ते फौरी तौरु अमल करे रिपोर्ट ॾियण जो हुकुम। कमेटी जे कन्वेनर सेनेटर ज़मीर घुमरो जो चवणु हो त सिंध जी 1 लख नौकरियुनि समेत चइनी सूबनि जूं पौणा 3 लख आसामियूं वफ़ाकी इदारनि में खाली पियल आहिनि। आइन रोज़गार जी ज़मानत ॾिए थो। पार्लियामेंट फंड बि ॾिना आहिनि, पोइ बि रोज़गार न पियो ॾिनो वञे। सिंध खे 19% मिलंदड़ सूबाई कोटा हाणे आबादीअ जी बुनियाद ते 23% थी वई आहे। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह सां इंटरनेशनल फिनांस कारपोरेशन जी पाकिस्तान में मुक़रर डायरेक्टर जी मुलाक़ात। सिंध में आलमी डेटा सेंटर्स जी क़याम ऐं मुतबादल एनर्जी वारनि ज़रियनि ते ॻाल्हियूं। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जो चवणु हो त नंढनि आबादगारनि खे ग्रुप जी सूरत में सब्सिडी वारा ट्रैक्टर फराहम कया वेंदा। आबादगारनि जी तरबियत बि ज़रूरी आहे। गिलगित बल्तिस्तान जे वॾे वज़ीर एडवोकेट अमजद हुसैन उहिदे जो हलफ़ खणी वरितो। गवर्नर मेहदी शाह अमजद हुसैन खे उहिदे जो हलफ़ खणायो। पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि तकरीब में शरीक थियो। गिलगित बल्तिस्तान जे वॾे वज़ीर जो चवणु हो त गिलगित बल्तिस्तान जा मसला हल करणु पहिरीं तरजीह हूंदी। इस्लामाबाद में पाक फिज़ाया जे ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक खे शहीद कंदड़ जवाबदार जी CCTV फुटेज साम्हूं अची वई। जवाबदार खे कैप्टन आसिम तारिक खे शहीद करण बाद दुकान तां नई शर्ट वठी तब्दील कंदे ॾिसी सघिजे थो। जवाबदार गुज़िरियल ॾींहुं पाक फिज़ाया जे ग्रुप कैप्टन खे शहीद कयो हो। लाहौर में ॿिनि परॾेही औरतुनि जी अगवा ऐं ज़्यादती वारे केस में अहम अगभराई। परॾेही औरतुनि सां इज्तमाही ज़्यादतीअ जी तस्दीक थी वई। टिनि जवाबदारनि जा DNA बि मैच थी विया। पुलिस ज़रियनि मूजिबि जवाबदार नवाज़, साजिद ऐं सिकंदर जा जुज़ा मैच थी विया आहिनि। जवाबदार नवाज़ सभ खां पहिरीं औरतुनि सां ज़्यादती कई। 8 जवाबदारनि जा DNA सैंपल वरिता विया आहिनि। लखी गुलाम शाह वेझो जतोई ऐं महर बिरादरी में ॿीहर तकरार बाद पुलिस जो ऑपरेशन। मुबैना तौरु मार्टर गोला लॻण सबबि ॿ नींगर मारिजी विया। पुलिस चयो आहे त धुरनि में तकरार बाद ऑपरेशन कयो पियो वञे। 5 जवाबदार गिरफ़्तार कया विया आहिनि। ॻोठाणनि जो चवणु हो त ॿई नींगर पुलिस जा मार्टर गोला लॻण सबबि मारिजी विया आहिनि। सिंध में पाणी खोट संगीन थी वई। आबादगारनि जा मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। घोटकीअ में आबादगारनि जो पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। टिकराठो में बि आबादगारनि पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई। टंडो बाग़ो में बि आबादगार रोडनि ते निकिरी आया, सख़्त नारेबाज़ी। कंदकोट जे मुराद शाख जे आबादगारनि बि पाणी खोट ख़िलाफ़ इंडस हाईवे ते धरणो हयो। खानपुर महर में बि खानगढ़ जे मुख़्तलिफ़ वाहन में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो धरणो। पूछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। खैरपुर शहर मां गुज़रंदड़ मीरवा कैनाल मां अणॼातल शख़्स जो लाश हथ। इलाइक़े वासियुनि लाश ॾिसी पुलिस खे इतलाह ॾिनो। पुलिस पहुची लाश खणाए इस्पताल मुंतकिल करे छॾियो। कंदकोट में रिसालदार शाही वाह में ॿुॾी फौत थियल ॿार जो लाश हथ। मक़ामी माण्हुनि खे शाख मां ॿार जो लाश मिलियो। टंडो अलियार में हद दख़लियूं हटाइण तां इंतज़ाम।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग। कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301386543।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
4: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320432 आई 0242460100।

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301 54 54 456 ऐं तौकीर अहमद 0306।

0: तव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेरे निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: मसान जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाकिस्तान जो अवाम मुतहद है, दुश्मन की हर साजिश नाकाम कंदो। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम से कल वायदा पाड़ी, समूरन जमायतों से गर्जी कम कदासी।

हमास 20 सालनि बाद गज़ा जी हुकूमत खां धार थी वई। गज़ा जो इंतज़ाम संभालींदड़ बाडी टोड़ण जो ऐलान। हमास जे तर्जुमान चयो आहे त गज़ा जो इंतज़ाम संभालींदड़ सिविल बाडीअ खे टोड़े छॾियो आहे। सिविल इंतज़ामिया खे ख़तम करण जो मक़सदु हथियार फिटा करणु न आहे। गज़ा जो इंतज़ाम अवामी सतह ते क़बूलियत जोॻे शख़्स हवाले कयो वेंदो। ईरान जे शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई जूं आख़िरी रस्मूं जारी। मड़ खे जलूस जी सूरत में मुस्लह मस्जिद खां कुम मुंतकिल करण वारो सफ़र जारी। लखें सोगवारनि पारां अमरीका ऐं इसराइल खां क़तल जो पलांद वठण जो मुतालबो। जलूस बाद शहीद आयतुल्ला अली खामनाई जो मड़ कुम मुंतकिल कयो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पशिकियान चयो आहे त शहीद राबर सेखारे छॾियो त ईरान जो अज़ीम सरमायो अवाम ऐं इतिहादु आहे। असां ईरान जी इज़त, तरक़ी ऐं अज़मत वारे रस्ते ते हलंदा रहंदासीं। ईरान सां अमुन ॻाल्हियूं खामनाई जी आख़िरी रस्मनि ताईं मुअत्तल रहंदियूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तस्दीक करे छॾी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट सां ॻाल्हाईंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान जूं समूरियूं आला शख़्सियतूं जनाज़ निमाज़ में मौजूदु आहिनि। चाहियूं था त खेन ख़तमु करे सघूं था, पर असां ईअं न कंदासीं, पोइ ॻाल्हियुनि लाइ केर बि न बचंदो।

0: डेवोल्यूशन बाबति सेनेट जे फंक्शनल कमेटीअ जो इजलास 16 सालनि खां सूबाई कोटा ते अमल न थियण जो इंकशाफ़। चइनी सूबनि में 4.5 लख नौकरियुनि ते वफ़ाक पारां कोटा ते अमल न करण जी तस्दीक। सिंध जूं 1 लख नौकरियूं बि शामिल। कमेटी तरफ़ां 1 खां 16 ग्रेड जी नौकरियुनि ते फौरी अमल करे रिपोर्ट ॾियण जो हुकुम। कमेटी जे कन्वीनर सेनेटर ज़मीर घुमरो जो चवण हो त सिंध जे 1 लख नौकरियुनि समेत चइनी सूबनि जूं 4.5 लख आसामी वफ़ाक़ी इदारनि में खाली पियल आहिनि। आइन रोज़गार जी ज़मानत ॾिए थो। पार्लियामेंट फंड बि ॾिना आहिनि, कोई बि रोज़गार न पियो ॾिनो वञे। सिंध खे 19% मिलंदड़ सूबाई कोटा हाणे आबादी जी बुनियाद ते 23% थी वई आहे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ

0: पाकिस्तान ख़िलाफ़ मोदीअ जी साज़िश नाकाम बणाईंदासीं, सिंधूअ जो पाणी रोकियो वियो त जंग थींदी, सिंतास मुआदे ते कॾहिं बिठा न कंदासीं। गिलगित बल्तिस्तान में वॾे वज़ीर जे हलफ़ बरदारी तकरीब खे ख़िताब कंदे पीपी चेयरमैन बिलावल भुटो चयो त पाक फ़ौज जंग में भारत खे बर्तनाक शिकस्त ॾिनी। भारत खां शिकस्त हज़म न थी रही आहे, भारत हाणे इसराइली मॉडल अख़्तियार कयो। मोदी अफ़ग़ानिस्तान ज़रिए पाकिस्तान में मुदाख़लत करणु चाहे थो। पाकिस्तान जो अवाम मुतहद आहे, दुश्मन जी हर साज़िश नाकाम कंदो। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम सां कयल वाइदा पाणींदासीं, समूरनि जमातनि सां गॾिजी कमु कंदासीं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि नौजवाननि जे रोज़गार बाबति अहम इजलास। वज़ीर आज़म जी प्रोटेक्ट्रेट ऑफ इमिग्रेशन वारे निज़ाम खे डिजिटलाइज़ करण जी हिदायत। शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तान जी अफ़रादी क़ुवत बासलाहियत आहे, नौजवाननि जी रोज़गार ऐं हुनरी सिख्या लाइ ज़रूरी क़दम खया वञनि। ऐं हमास 20 सालनि बाद गज़ा जी हुकूमत खां धार थी वई। गज़ा जो इंतज़ाम संभालींदड़ बॉडी टोड़ण जो ऐलान। हमास जे तर्जुमान चयो आहे त गज़ा जो इंतज़ाम संभालींदड़ सिविल बॉडीअ खे टोड़े छॾियो आहे। सिविल इंतज़ामिया खे ख़तमु करण जो मक़सदु हथियार फिटा करणु न आहे। गज़ा जो इंतज़ाम अवामी सतह ते क़बूलियत जोॻे शख़्स हवाले कयो वेंदो।
1: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3583-569-0300-3855-69।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बहितर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003

0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94
1: Book Studio Season 14

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शहीदन के भेटा पेश। पाकिस्तान में भारतीय हामी दहशतगर्द ग्रुपन जी हमलन जी रिथाबंदी करण ते विगणती जाहिर। कोर कमांडर्स चयो त खिते में अमुन अफगान तालिबान जे असर हेठ जमीन ते भारतीय प्रॉक्सीज के रोकण से मशरूत आहे। शहीदन जो कुर्बानियों पाकिस्तान जी सलामती इतिहाद ए मजबूती जो बुनियाद रहंदियो। दहशतगर्दन खिलाफ बे कार्रवाई जारी रहंदियो। मोदी बुधी छद सिंतास मुआदे ते ठा न कंदासीं। सिंधु दरिया जो दिफा कंदासीं। जंग विड़नी पई त विड़ी ॾेखारींदासीं। तुंहिंजे हर साज़िश नाकाम बणाईंदासीं ऐं कामयाब असीं थींदासीं। गिलगित बल्तिस्तान में वॾे वज़ीर जे हलफ बरदारी तकरीब खे ख़िताब कंदे पीपी चेयरमैन चयो त पाक फ़ौज जंग में भारत खे बर्तनाक शिकस्त ॾिनी। भारत खां शिकस्त हज़म न थी रही आहे। भारत हाणे इसराइली मॉडल अख़्तियार कयो। मोदी अफगानिस्तान ज़रिए पाकिस्तान में मुदाख़लत करणु चाहे थो। पाकिस्तान जो अवाम मुतहद आहे। दुश्मन जी हर साज़िश नाकाम कंदो। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम सां कयल वाइदा पाणींदासीं। समूरनि जमातनि सां गॾिजी कम कंदासीं। वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि नौजवाननि जे रोज़गार बाबति अहम इजलास। वज़ीर आज़म जे प्रोटेक्ट्रेट ऑफ इमिग्रेशन वारे निज़ाम खे डिजिटलाइज़ करण जी हिदायत। शाहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तान जी फरादी कुवत बासलाहियत आहे। नौजवाननि जे रोज़गार ऐं हुनरी सिख्या लाइ ज़रूरी क़दम खया वञनि। हमास 20 सालनि बाद गज़ा जी हुकूमत खां धार थी वई। गज़ा जो इंतज़ाम संभालींदड़ बाडी टोड़ण जो ऐलान। हमास जे तर्जुमान चयो आहे त गज़ा जो इंतज़ाम संभालींदड़ सिविल बाडीअ खे टोड़े छॾियो आहे। सिविल इंतज़ामिया खे ख़तम करण जो मक़सदु हथियार फिटा करणु नाहे। गज़ा जो इंतज़ाम अवामी सतह ते क़बूलियत जो ईरान जे शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई जूं आख़िरी रस्मूं जारी। मड खे जलूस जी सूरत में मसला मस्जिद खां कुम मुंतकिल करण वारो सफ़र जारी। लखे सोग वारनि पारां अमरीका ऐं इसराइल खां क़तल जो पलांद वठण जो मुतालबो। जलूस बाद शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई जो मड कुम मुंतकिल कयो वेंदो। ईरानी सदर मसूद पशिकियान चयो आहे त शहीद रहबर सेखारे छॾियो त ईरान जो अज़ीम सरमायो अवाम ऐं इतिहादु आहे। असां ईरान जी इज़त तरक़ी ऐं अज़मत वारे रस्ते ते हलंदा। ईरान सां मामला बहितरीन अंदाज़ में अॻिते वधी रहिया आहिनि। अमरीकी फ़ौज अस्करी मैदान में ईरान खे शिकस्त ॾिनी। तहरान कॾहिं बि एटमी हथियार ठाहे न सघंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त अमरीकी फ़ौज वेनेज़ुएला में बहितरीन कारकर्दगी ॾेखारी। हाणे बि दुनिया जी बहितरीन फ़ौज आहे। डिवोल्यूशन बाबति सेनेट जे फंक्शनल कमेटीअ जो अहम इजलास। 16 सालनि खां सूबाई कोटा ते अमल न थियण जो इंकशाफ़। चइनी सूबनि में पोणा 3 लख नौकरियुनि ते वफ़ाक पारां कोटा ते अमल न करण जी तस्दीक। सिंध जूं 1 लख नौकरियूं बि शामिल। कमेटी तर्फ़ां 1 खां 16 ग्रेड जी नौकरियुनि ते फौरी अमल करे रिपोर्ट ॾियण जो हुकुम। कमेटी जे कन्वेनर सेनेटर ज़मीर घुमरो जो चवणो हो त सिंध जे 1 लख नौकरियुनि समेत चइनी सूबनि जूं पोणा 3 लख आसामी वफ़ाकी इदारनि में खाली पियल आहिनि। आइन रोज़गार जी ज़मानत ॾिए थो। पार्लियामेंट फंड बि ॾिना आहिनि, पोइ बि रोज़गार न पियो ॾिनो वञे। सिंध खे 19% मिलंदड़ सूबाई कोटा हाणे आबादी जी बुनियाद ते 23% थी वई आहे। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह सां इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन जे पाकिस्तान में मुक़रर डायरेक्टर

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 583 569 0300 333 8569।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03119155724।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 0242460100

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94।

0: कोर कमांडर जो परदेही मदद ज़रिए इंतशार पखेड़ींदड़नि खे चिथण जो फ़ैसिलो सिंतास मुआहिदे बाबति भारती मौक़िफ़ रद्द पाणीअ जे जाइज़ हक़ लाइ समूरा घुर्बल क़दम खणण जो बि ऐलान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जी सदारत हेठि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कश्मीर पाकिस्तान जी शहरग करार पाकिस्तान में थींदड़ दहशतगर्द हमलनि लाइ अफ़गान सरज़मीन जे इस्तेमाल ते गणतीअ जो इज़हार अफ़गान तालिबान रिजीम खां पाकिस्तान ख़िलाफ़ पंहिंजी सरज़मीन जो इस्तेमाल रोकण जो बि मुतालबो पाकिस्तान में दहशतगर्दीअ लाइ इस्तेमाल थींदड़ अफ़गान इलाइक़नि में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवायूं जारी रखण जो फ़ैसिलो फॉर्म चयो आहे त दहशतगर्दी सबबि मुतासिर थींदड़ इलाइक़नि में गवर्नेंस जो बहितरीन निज़ाम जोड़ियो वञे जेको सियासी पुठिभराईअ सां थींदड़ दहशतगर्दी ऐं ॾोहनि वारी गठजोड़ खे टोड़े फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कोर कमांडर्स खे जंग जी तब्दील थींदड़ किरदार मूजिबि मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान ते अमल तेज़ करण जी हिदायत कंदे चयो आहे त पाकिस्तान जी सलामती ऐं क़ौमी मफ़ादनि जो हर क़ीमत ते तहफ़ुज़ कयो वेंदो
1: भारत को बताना चाहते हैं कि सिंधु गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के आवाम से लेके बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर तक कोस तक के जो आवाम हम इसका दिफा करेंगे हम आपको जवाब देंगे हम सिंधु पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं है जंग लड़ना पड़ेंगे तो जंग लड़ने के लिए तैयार है गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर से लेके इलाकानों तक के आवाम तैयार है मरसू सिंधु ना दे सू जिसका मतलब है मरूंगा मगर सिंधु पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा
0: मोदी बुधी छद सिंतास मुआहिदे ते कॾहिं बिठा न कंदासीं सिंधु दरिया जो दिफ़ा कंदासीं जंग विड़णी पई त विढ़ंदासीं तुंहिंजी हर साज़िश नाकाम बणाईंदासीं ऐं कामयाब थींदासीं गिलगित बल्तिस्तान में वॾे वज़ीर जी हलफ़ बरदारी तकरीब खे ख़िताब कंदे पी पी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी चयो त पाक फ़ौज जंग में भारत खे बर्तनाक शिकस्त ॾिनी भारत खां शिकस्त हज़म न थी रही आहे भारत हाणे इसराइली मॉडल अख़्तियार कयो मोदी अफ़गानिस्तान ज़रिए पाकिस्तान में मुदाख़लत करणु चाहे थो पाकिस्तान जो अवाम मुतहद आहे दुश्मन जी हर साज़िश नाकाम कंदो गिलगित बल्तिस्तान में अवाम सां कयल वाइदा पाड़ींदासीं समूरनि जमायतनि सां गॾिजी कमु कंदासीं हमास 20 सालनि बाद गज़ा जी हुकूमत खां धार थी वई गज़ा जो इंतिज़ाम संभालींदड़ बाडरी टोड़ण जो ऐलान हमास जे तर्जुमान चयो आहे त गज़ा जो इंतिज़ाम संभालींदड़ सिविल बाडरीअ खे टोड़े छॾियो आहे सिविल इंतिज़ामिया खे ख़तम करण जो मक़सदु हथियार फिटा करण न आहे गज़ा जो इंतिज़ाम अवामी सतह ते क़बूलियत जोॻे शख़्स हवाले कयो वेंदो ईरान जे शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई जूं आख़िरी रस्मूं जारी मड़ खे जलूस जी सूरत में मसला मस्जिद खां कुम मुंतकिल करण वारो सफ़र बि जारी लखे सोगवारनि पारां अमरीका ऐं इसराइल खां क़तल जो पलान वठण जो मुतालबो जलूस बाद शहीद आयतुल्ला अली खामनाई जो मड़ कुम मुंतकिल कयो वेंदो ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो आहे त शहीद रहबर सेखारे छॾियो त ईरान जो अज़ीम सरमायो अवाम ऐं इतिहादु आहे असां ईरान जी इज़त तरक़ी ऐं अज़मत वारे रस्ते ते हलंदा रहंदासीं ईरान सां मामला बहितरीन अंदाज़ में अॻिते वधी रहिया आहिनि अमरीकी फ़ौज अस्करी मैदान में ईरान खे शिकस्त ॾिनी आहे तहरान कॾहिं बि एटमी हथियार ठाहे न सघंदो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमरीकी फ़ौज वेनेज़ुएला में बहितरीन कारकर्दगी ॾेखारी हाणे बि दुनिया जी बहितरीन फ़ौज आहे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि नौजवाननि जे रोज़गार बाबति अहम इजलास

सदर आसिफ जरदारी सरकारी दौरे ते किर्गिस्तान पहुंची वयो। सदर सादिर ज़ापारूफ सदर आसिफ जरदारी जी एयरपोर्ट ते आजियां कई गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश कयो वयो। सदर किर्गिस सदर ए बेन अख्तियारन सां मुलाकातूं कंदो, बेतरफन लागापन समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि बि थींदी।

डेवोल्यूशन बाबत सेनेट जे फंक्शनल कमेटी जो अहम इजलास 16 सालन का सूबाई कोटा ते अमल न थियण जो इंकशाफ। चैनी सूबन में पौणा 3 लख नौकरियों ते वफाक पारा कोटा ते अमल न करण की तस्दीक। सिंध जो 1 लख नौकरियों भी शामिल। कमेटी तरफा 1 खां 16 ग्रेड की नौकरियों ते फौरी अमल कर रिपोर्ट देने हुक्म। कमेटी के कन्वीनर सेनेटर जमीर घुमरो है सिंध के 1 लख नौकरियों समेत चैनी सूबन जो पौणा 3 लख आसामियों वफाक इदारों में खाली पल हैं। आइन रोजगार की जमानत दे तो पार्लियामेंट फंड भी दिना कोई भी रोजगार न पो दिनों वे। सिंध के 19% मिलंदड़ सूबाई कोटा हाने आबादी की बुनियाद 23% थी वही है।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खुशखबरी खुशखबरी, हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300 583 569 0300 553 89।

0: में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
2: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-32-04372
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर राबते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120

मस्त घणी मुल्कन में पर कागज़न लख हज़ार कागज़ लिख जन उन्हन दे जन जू दिलियूं हुजन ज़ार मुंह वही ज़ार तोड़ कागज़ लिखाऊं केड़ा पूरा महबूब चयो तो ॾियां कागज़ कहिड़ा लिखां त आश्क ॾिसी चयसि पियो उहो लिखी ख़त सजण ॾे सभई सूर सलबा लिखी ख़त सजण ॾे ख़बर ॿुध चए पियो ख़त ॾाढा लिखां थो पर मुंहिंजो अखियूं रुअण खां पियूं नचूं थो मां लिखी नथो सघां लिखी ख़त सजण ॾे सभई सूर सलबा लिखी ख़त सजण ॾे सभई सूर सलबा रुअण कान मान नहीं।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूम

गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे तो राबते लाइ 0301 2196 851

0: ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।

0: खूबसूरतीअ जो असल राज़ सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: जारी रखण जो फैसलो। फॉर्म चयो आहे त दहशतगर्दी सबबि मुतासिर थींदड़ इलाइक़नि में गवर्नेंस जो बहितरीन निज़ाम जोड़ियो वञे, जेको सियासी पुठभराईअ सां थींदड़ दहशतगर्दी ऐं ॾोहनि वारी गठजोड़ खे टोड़े। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कोर कमांडर्स खे जंग जी तब्दील थींदड़ किरदार मूजिबि मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान ते अमल तेज़ करण जी हिदायत कंदे चयो आहे त पाकिस्तान जी सलामती ऐं क़ौमी मफ़ादनि जो हर क़ीमत ते तहफ़ुज़ कयो वेंदो।
1: भारत को बताना चाहते हैं कि सिंधु, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के आवाम से लेके बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर तक, कोस्ट तक के जो आवाम, हम इसका दिफा करेंगे, हम आपको जवाब देंगे, हम सिंधु पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। जंग लड़ना पड़ेंगे तो जंग लड़ने के लिए तैयार है। गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर से लेके लारकानों तक के आवाम तैयार है। मरसू मरसू सिंधु ना देसु, इसका मतलब है मरूंगा मरूंगा मगर सिंधु पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा।
0: मोदी बुधी छे सिंध तास मुआदे ते कदें बिठा न कंदासी, सिंधु दरिया जो दिफा कंदासी, जंग विड़नी पई त विढ़ंदासी, तुझी हर साजिश नाकाम बणाईंदासी ऐं कामयाब थींदासीं। गिलगित बल्तिस्तान में वॾे वज़ीर जी हलफ बरदारी तकरीब खे ख़िताब कंदे पी पी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त पाक फ़ौज जंग में भारत खे बर्तनाक शिकस्त ॾिनी। भारत खां शिकस्त हज़म न थी रही आहे, भारत हाणे इसराइली मॉडल अख़्तियार कयो। मोदी अफ़गानिस्तान ज़रिए पाकिस्तान में मुदाख़लत करणु चाहे थो। पाकिस्तान जो अवाम मुतहद आहे, दुश्मन जी हर साज़िश नाकाम कंदो। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम सां कयल वाइदा पाड़ींदासीं, समूरनि जमायतनि सां गॾिजी कमु कंदासीं। हमास 20 सालनि बाद गज़ा जी हुकूमत खां धार थी वई, गज़ा जो इंतिज़ाम संभालींदड़ बाडी टोड़ण जो ऐलान। हमास जे तर्जुमान चयो आहे त गज़ा जो इंतिज़ाम संभालींदड़ सिविल बाडीअ खे टोड़े छॾियो आहे। सिविल इंतिज़ामिया खे ख़तम करण जो मक़सदु हथियार फिटा करणु नाहे। गज़ा जो इंतिज़ाम अवामी सतह ते क़बूलियत जोॻे शख़्स हवाले कयो वेंदो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।